दोपहर 12 बजे एफएम न्यूज हेडलाइंस ते उस तो ठीक बाद प्रोग्राम होम स्वीट होम दोपहर 1 बजे सुन पाऊंगे प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक सुनोगे पंजाबी खबरां दिलाज शायर है दोपहर 2 बजे

नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग पॉजिटिव हैप्पी हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वॉर्म वेलकम कर दिया जी तुहाड़ा सारिया दा ही जिन्हां जिन्हां ने साडे लिसनर्स ने इस वेले ट्यून किया होया एफ एम रेनबो नू 102.7 ते 103.6 यानी कि AIR अमृतसर ते, और इसे ही फ्रीक्वेंसी दे जरिए सरहद पार तो जुड़दे ने साडे प्यारे प्यारे लिसनर्स तुहाडे अपने आकाशवाणी जलंधर दे एफ एम रेनबो चैनल दे नाल, और जो सानू ट्यून करके बैठे ने साडी ऐप दे जरिए यानी कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप दे जरिए, तुहाडा वी तहे दिलों थैंक यू कर दिया जी ढेर सारा। क्योंकि मैनू पता है बहुत सारिया चीज़ा दुनिया दे विच हुंदियां ने वधिया वधिया चमक दमक वालियाँ, बिल्कुल वधिया वालियाँ, लेकिन उहदे विच कुछ चीज़ा हुंदियां ने ना साडे दिल नू लगदियां ने, असीं उहदे नाल बहुत कनैक्टेड फील करदे हाँ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चमक दमक होवे उस चीज़ दे विच, लेकिन अपनेपन दा एहसास हुंदा है उस चीज़, बस ये एहसास ही तो एफ एम रेनबो दे नाल साडे लिसनर्स नू फील हुंदा है। गल्लां उही आपां सिंपल कर दीदियां है, यानी कि जिदा आपां अपणियां नाल करीदियां ने, बस इन्हां गल्लां करके ही तो साडे लिसनर्स पसंद करदे ने एफ एम रेनबो नू। तो लो जी, एफ एम रेनबो ते आ चुकी हाँ अज दी प्यारी जी सवेर, खुशबूदार जी ठंडी ठंडी मिठी मिठी जी सवेर। मंडे मॉर्निंग 22 जून है अज दा दिन, और स्टूडियो विच हाजिर हो चुकी मैं तुहाड़ी दोस्त आर जे पूजा टोहानी, लेके तुहाड़ा फेवरेट वाला डेली इनफॉरमेशन वाला शो, जिस विच इनफॉरमेशन ते एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज हुंदी है जी। तुहाड़ा फेवरेट शो गुड मॉर्निंग जलंधर। गुड मॉर्निंग जलंधर बेशक जलंधरों में सुनानी है तुहानूं, लेकिन पहुंचदा ये देशा विदेशा दे कोने कोने तक है। तो लो जी, फिर टाइम हो गया है सवेर दे 7:05 और पूरे 50 सेकेंड, ते ये चलेगा प्रोग्राम 8:30 बजे तक, और 8:30 बजे सुनोगे तुसी खबरां, ते 8:40 तो 9 बजे तक वो सैगमेंट जिस दे विच मैं ऐदां दे बीट सॉन्ग्स पंजाबी गाने चलाऊंगी। सैगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा, जिस दे विच तुसी गाने भी इंजॉय करोगे ते तुहाडा वर्कआउट सैशन भी हो जाएगा, यानी कि एक्सरसाइज वाला सैशन तुसी रेडियो ते अज सुन के कर सकते हो कंप्लीट। 9 बजे तुसी मेरे तो ही एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस सुनोगी, और उस तो बाद दिल अपना पंजाबी शो, जिस विच तुसी व्हाट्सएप ते ऑडियो मैसेजेस भेज के शामिल हो सकते हो साडे प्रोग्राम च, और शेयर कर सकते हो, सांझियां कर सकते हो अपनी दिल दियां गल्लां मेरे नाल, ते ऑन एयर बाकी सारियां दे नाल, बिल्कुल लाइव, क्योंकि लाइव है तो लाइव है, और एफएम रेनबो बिल्कुल लाइव है, और ये लाइव गल्लां जिहड़ियां आपां करीदियां ने दिल तो करीदियां ने ते पहुंचदियां ने तुहाडे दिल तक। सो शुरू करदे आं अज दा ये प्यारा जिहा सफर जिहड़ा के शुरू हो चुका है 5:53 तो मेरे नाल।

थैंक यू गॉड, परमात्मा दा शुक्रिया हर चीज दे ले। और मैनू लगदा कि इस बार परमात्मा नेड़े होके ना कईयां दी सुन रहा है, खास करके प्लेयर्स दी, क्योंकि जो जो असी प्रिडिक्ट कीता हुंदा है, मतलब पिछले हिसाब किताब नू देखदे हुए, पिछली हिस्ट्री नू देखदे हुए, वो बहुत सारे पैरामीटर्स हुंदे ने जिस दी प्रिडिक्शन कीती जांदी है कंसिस्टेंट किसी प्लेयर दी गेम देखदे हुए। लेकिन जिहड़े प्लेयर हुंदे ने उन्होंने हाथ में भी बड़ा कुछ होंगे कि उन्होंने अपनी गेम किस तरीके दे नाल बदल लेनी है। और फिर सब तो बाद और मेन जिहड़ा एक रोल प्ले करता है वह है जी किस्मत। किस्मत का एक बहुत वड्डा रोल होंदा है हर किसी की जिंदगी। और ऐदा दा ही करिश्मा बहुत सारे प्लेयर्स कर रहे ने। फिलहाल सब तो पहला मैं तुहानूं दसन जा रही हूँ साडी भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने यस्टरडे यानी कि बीती रात, कल जिहड़ा दिन बीते यानी कि रविवार यानी कि संडे, इन्होंने इतिहास रच दिता है जी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच दे विच उत्तम रही इन्होंने 200 इंटरनेशनल T20 खेडण वाली दुनिया की पहली खिडारन बनने का इतिहास रचा है, यानी कि 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेड चुके ने हरमनप्रीत कौर। और ऐदा का इतिहास रचन वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गए ने। और इन्हां दे जो आदर्श ने आइडल वो साडे सब दे प्यारे वीरेंद्र सहवाग जी ने। और इन्हां दा कहना कि उदां दे आक्रामक तरीके दे नाल खेडण करके ही मेरी पहचान बन पाई है। 2009 दे विच T20 वर्ल्ड कप दे विच इन्हां ने अपना डेब्यू किया सी। 10वें वर्ल्ड कप दे विच इन्हां

0: जी मैनू लगदा
1: प्यार करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं।
0: इसे करके मैं कह रही सी कि जे जिंदगी दी वजह से ऐदा ना करिए, जिस चीज नू प्यार करदे आ ओदे पिछे मेहनत ना करिए, मलाल ते फिर रही जांदा, फिर ते चाहे जिन्नियां मर्जी चीजां तुसी पा लो, सुकून नहीं मिलदी, खुशी नहीं मिलदी, शांति नहीं मिलदी, क्योंकि जिहड़ी चीज दिल नू लगी हुंदी है ना, खुशी ते फिर ओदे मिलन दे नाल ही हुंदी है ना, ते चाहे गोल ही क्यों ना होवे। मतलब मैं फुटबॉल दे गोल दी गल कर रही हां। ओके चलो जिंदगी दे गोल दी भी असीं गल कर सकदे हां, दे विच सारे गोल्स विच ही आउंदे ने, फुटबॉल दा भी ते जिंदगी दा भी। सो फीफा वर्ल्ड कप दे ग्रुप एफ दे मुकाबले दे विच जापान ने ट्यूनेशिया नूं 4-0 दे नाल हरा के शिकस्त दे दित्ती है, और फीफा वर्ल्ड कप दे इतिहास दा 1000वां मैच सी ए, जिस विच वर्ल्ड कप दे विच मतलब जिहड़ा फीफा वर्ल्ड कप आपां गल कर रहे हैं, 4 गोल करन वाला पहला एशियन देश बन गया है जापान। ट्यूनीशिया की लगातार दूसरी हार है और नॉकआउट की रेस तो बाहर हो चुका है जी ट्यूनीशिया। उधरों असी गल करिए अगर यमाल मैच का, पहला गोल दागण वाले पेले तो बाद सब तो युवा खिडारी बन गए ने। अटलांटा दे विच स्पेन ने सऊदी अरब नू 4-0 ना दे दित्ती है टोटली मात, और इस मैच दे विच 18 साल दे स्टार लामिने यमाल ने सिर्फ 10वें मिनट दे विच गोल कर दिता है। इहदे नाल ही 1958 दे विच यानी कि ब्राज़ील दे पेले जिन्हां दी उम्र 17 साल सी और उन्होंने वर्ल्ड कप मैच दे विच स्कोरिंग करन दी शुरुआत कीती सी सब तो युवा खिडारी, और उन्हां तो बाद हुण इन्हां दी वारी आ गई है 18 साल दे स्टार लामिने। 1958 तो बाद 2026 नवीं नवीं चीज़ां हो रही ने, नवें नवें रिकॉर्ड बन भी रहे ने, पिछले टुट भी रहे ने, बड़ा कुछ वखरा हो रहा है इस बार फीफा वर्ल्ड कप दे विच। चलो बाकी गल्लां चलदियां रहनगियां, लेकिन फिलहाल टाइम हो गया है प्रभु का नाम लैके प्रोग्राम इंजॉय करते रहन दा। पूजा तोहानी तुहाडे नाल, स्टेडियम ओनली ऑन FM रेनबो।

और उस तो बाद एक बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन दूंगी आज दे दिन बारे कश्मीर वाले लिए है वो वाली इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन सारे लिए लेकिन एरिया खास है कश्मीर जिसकी अगली इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी तुहाड़े नाल। पूजा टोहानी, FM रेनबो ते दिल से दिल तक।

0: का यहाँ पर रेगना रूप है या आप कहिए वैष्णवी का ही रूप है
1: जी।
0: और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास अगर हम बात करेंगे तो हमें रामायण के युग में जाना पड़ेगा
1: जी।
0: ये कहा जाता है कि श्यामा भगवती के नाम से जो पार्वती का स्तूप है इनका जो मंदिर था ये श्रीलंका में था
1: जी।
0: और उस समय जब वो आपको सभी को मालूम है कि रावण शिव जी के भक्त थे
1: जी।
0: लेकिन जब राम जी और रावण के बीच में वो युद्ध छिड़ गया और तानातनी हो गई तब माता बहुत ही रावण से बहुत ही खफा हो गई और उन्होंने इनको हनुमान जी को बोला कि मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं इस धरती पर नहीं रहना चाहती हूँ। तब कहा जाता है कि हनुमान ने अपने कंध में बिठा के माता को कश्मीर ले आए उनके ही कहने आगे आदेश पर और वहाँ पे दो तीन स्थानों पे ये रुकी हैं जिनमें साउथ कश्मीर में एक मंजगाम है और नॉर्थ में एक टिक्कर नाम का गांव है और फाइनली ये तुलामुला जो श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर है
1: जी।
0: उस जगह पे इन्होंने अपना स्थान ले लिया और वहाँ पे ये इनकी स्थापना बन गई
1: जी।
0: और उसके बाद बहुत सारे युग बदल गए रामायण के बाद। कहते हैं कि एक समय पर बहुत बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और बाढ़ में वो सारा जो स्थापना थी वो सारा मंदिर वंदिर जो था वो बह गया और बाद में उनके बाद काफी सारे भक्त थे और दो एक तो नाम बहुत अहम है जो इनमें से कृष्ण पंडित नाम है एक, उनके सपने में आती है माता और बोलती है कि मुझे फलानी जगह ले चलो वहां पे ही मैं रहूंगी
1: जी।
0: और आपको मैं सुबह ये सांप के रूप में होंगी, मैं जहां जहां जाऊंगी आप मेरा पीछा करके वहां तक ले आए मुझे वहीं पे छोड़ ली। तब वो कहते हैं कि इस स्थान पे जो अब तुलमुला के नाम से मशहूर है
1: जी।
0: और तुलमुला का मतलब है बहुत ही मूल्यवान स्थान
1: जी।
0: और तुलमुला का दूसरे नाम से है कि तुलमुला एक कहते हैं दरख का नाम है मलबरी ट्री
1: जी जी जी
0: उसके नाम से भी ये गांव मशहूर है और वहां पे इसका इनका जो मंदिर बाद में प्रताप सिंह महाराजा प्रताप सिंह ने दोबारा से बनवा दिया और तब से अब तक वो मंदिर है और वहां पे एक चश्मा है
1: जी।
0: और एक काफी सारा इस स्थान पे काफी सारे चिनार का एक गार्डन है जहाँ पे इनका स्थान है। ये तो इनका हिस्टोरिक ये है जो इनका जो हिस्ट्री है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है
1: सर इस जी
0: जहाँ पे धार्मिक जो लोगों की आस्था का सवाल है इसके साथ बहुत ही आस्था है हमारे कश्मीरी हिंदुओं की जिनको आप कश्मीरी पंडित भी बोलते हैं
1: जी
0: उनके और ये बहुत ही महान स्थापना है और आज के दिन आपने शुरू में बोला था अष्टमी का दिन है
1: जी
0: ज्येष्ठ अष्टमी शुक्ल पक्ष
1: जी,
0: आज
1: जी,
0: के
1: जी.
0: दिन यहाँ ये समझिए कि एक मेला लगता है एनुअल मेला हर साल
1: जी
0: तो हर साल दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे और ये बल्कि एक दिन पहले 7वीं तारीख को आते हैं पूरी रात पूजा अर्चना करते हैं और आज पूरा दिन पूजा अर्चना चलती है और बहुत ही श्रद्धा के साथ लोग आते हैं और इस दिन कोई को काफी सारे लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन खाते हैं तो काफी श्रद्धा है कश्मीरों के इस स्थान से बहुत ही श्रद्धा जुड़ी है
1: जी। सर मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपने इसका धार्मिक इतिहास भी बता दिया और आपने उसका सभ्याचारिक इतिहास भी बताया कि किस तरीके से ये जो मेला है वहाँ का बहुत ही प्राचीन है ना मेला है, लेकिन एक चीज और इस मंदिर के बारे में और इस जगह के या इस मेले के बारे में प्रचलित हम कह सकते हैं कि इस मंदिर में एक पवित्र चश्मा भी है झरना जिसको हम कह देते हैं कि उसका पानी का रंग बदलता है, क्या ये सच है?
0: इसके बारे में जी ये नॉर्थ इसके नॉर्मल इसका जो जैसे हर अच्छे पानी का साफ पानी का वो गहरा नीला रंग होता है
1: जी
0: वो रहता है और ये कहा जाता है ये माना जाता है कि जब कोई आपदा आने वाली होती है या जो कोई बुरा टाइम

0: होने वाला होता है तो इस पानी का रंग बदल जाता है, वो या तो काला हो जाता है या लाल हो जाता है। वो एक इंडिकेशन मिलती है कि कुछ बुरा होने वाला है। ये लोगों ने इसमें काफी काफी सारी दवाइयां हैं, काफी सारी युग ऐसे बीते हैं, काफी सारा समय आया है जब जब ये हुआ है। और ये रिसेंटली जब 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ मिलिटेंसी की वजह से, तो तब भी वो लेटेस्ट उससे कुछ महीने पहले ही ये रंग बदल गया था पानी का
1: जी।
0: तो लोगों को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है
1: जी।
0: ये है, ये शरा है। और इसमें जैसे खीर भवानी नाम के बारे में आपको बताऊं, मैं खीर भवानी क्यों बोलती हैं, इस चश्मे में नॉर्मली जब पूजा अर्चना के लिए लोग जाते हैं तो इसमें खीर चढ़ाते हैं, खीर माता को बहुत पसंद है,
1: माता को खीर का भोग लगाया जाता है,
0: दूध चढ़ाते हैं
1: जी।
0: तो जैसे हम शिव जी की भक्ति वो करते हैं तो शिव जी के ऊपर दूध डालते हैं या पानी डालते हैं, ऐसे इस चश्मे में वो खीर या दूध चढ़ाया जाता है, इसकी वजह से भी इसको खीर भवानी का नाम दिया गया है।
1: जैसे तो
0: माता रागिना भगवती
1: जी
0: की प्रतिमा वहाँ पे है जिनके साथ शिव जी की भी है।
1: तो क्या सर इसके पीछे भी कोई खास परंपरा भी है जिसके कारण माता को खीर का भोग लगाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई, इसके पीछे भी कोई कहानी है?
0: कहानी ये इसके पीछे ऐसी कोई सच कहानी नहीं है, लेकिन ये हमारे हिंदू संस्था और हिंदू संस्थान जितने भी हैं या स्थापन जितने भी है, श्रद्धा ऐसी है कि जब भी कुछ घर में हमारे में कुछ
1: शुभ होता
0: है तो जरूर खीर बनाते हैं
1: जी।
0: और नॉर्मल में भी भोजन जब करते हैं तो भोजन के अंत में हम स्वीट डिश के रूप में हम खीर खाते हैं
1: जी।
0: तो ये खीर क्योंकि ये हमेशा इसका वो देवी देवताओं को भी जब हम भोग लगाते हैं तो खीर का भोग लगाते हैं या दूध का भोग लगाते हैं, तो ये ट्रेडिशन आप समझिए हमारे हिंदू इतिहास में इसका कर रहा है
1: जी। और सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे देश विदेश से जो भारतीय हैं इस संस्कृति से जुड़े हुए श्रद्धालु हैं वो आकर इस मेले में इस समागम में हिस्सा लेते हैं और इसको भावनात्मक तौर से अगर हम जानना चाहें तो ये जो मेला है भावनात्मक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है, हम सबको जोड़ने में क्या भूमिका निभाता है?
0: बहुत ज्यादा मतलब इसमें है कि देखिए एक तो हिंदुओं के लिए तो है ही, और हिंदू जैसे कश्मीरी खास तौर पर कश्मीरी तो वहाँ पे लोकल होने की वजह से उनमें है, लेकिन जो यहाँ से भी भारतवर्ष से भी जो हिंदू जाते हैं जैसे एज ए टूरिस्ट के रूप में जो भी जाता है वो जरूर इस स्थान पे जाता है। और ये नहीं कि आज के दिन तो एक खास मेला होता है, एनुअल मेला होता है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं
1: जी।
0: और नॉर्मल में भी वो चलता रहता सारा साल, लोग सारे साल आते रहते हैं इधर जो भी विदेश से या इंडिया से आते हैं। तो इसके साथ ये है कि इसमें ये लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे अगर आप पूजा अर्चना करेंगे आज के दिन या सप्तमी की रात के दिन तो कोई भी मनोकामना जो आपकी होगी वो पूरी हो जाती है, ये एक श्रद्धा है, श्रद्धा बनी हुई है
1: जी।
0: इस तरह से। और इसको हिंदुओं का ही नहीं, मैं आपको बताऊं जो लोकल वहाँ के मुसलमान है उस एरिया के या उस गाँव के रहने वाले उनको भी इस पर बहुत श्रद्धा है, उनको भी इस पर बहुत श्रद्धा है। और आज के दिन खास तौर पर वो लोग स्टॉल लगाते हैं वहाँ पे, पूजा का सामान बेचने वाले जितने हिंदू हैं उससे ज्यादा मुसलमान होते हैं जो पूजा का वो सामान बेचते हैं आज के दिन, और दिए वगैरह जगमगाते हैं वहाँ पे, वो बहुत बहुत सारा एक अनोख वो बहुत ही एक अनुपम दृश्य होता है
1: जी।
0: बहुत बहुत सारा अच्छा मतलब उसके वहाँ पे वातावरण ही ऐसा होता है कि जैसे आपको अपने आप वही लगता है कि कोई ऐसा स्थान है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: कश्मीर
1: जी,
0: के धार्मिक स्थानों में से तो ये दो तीन ही ऐसे हैं
1: जी।
0: और ये सबसे अहम है जहाँ हर कोई जाता है
1: जी।
0: ऐसे जैसे वहाँ पर्वत है या कश्मीर में अभी वो यात्रा चलेगी अभी शिव जी की यात्रा है वहाँ जो होने वाले हर साल होती है
1: अमरनाथ जी की यात्रा,
0: लेकिन ये इसका एक बहुत ही अलग ही एक महत्व है
1: जी।
0: वहाँ शंकराचार्य है, पर्वत है, लेकिन ये जो खीर भवानी है खीर भवानी का बहुत ही अलग ही एक स्थान है
1: जी। सर आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी आज के दिन के बारे में दी, लेकिन अंत में मैं ये आपसे जानना चाहूँगा

0: कि आज जो मेला खीर भवानी या क्षीर भवानी माँ का मेला है, इस मौके पर आप हमारे लिसनर्स को अपनी तरफ से अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, अंत में संदेश यह है कि एक सदा हमेशा हमारे जो खेत है हिंदू धर्म में, तो हम मानते हैं कि हम विश्वास रखते हैं कि अगर आप सदा से प्यार से अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपका हर हर काम, जो भी आपकी आपदाएं हैं, वो दूर हो जाएंगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। और ये एक भाईचारे का भी संदेश है इसमें कि अबो ऑल कॉस्ट जो जितने भी लोग हैं, मानवता के लिए है, ये नहीं कि हिंदू, ये जो भी वहाँ जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वहाँ पे जाके एक इस दिन में अलग सा एक अजीब सा अनुभव होता है कि सारे सारे धर्म एक है, सारा इंसान एक है, जैसे गुरु वाणी में कहा है कि सारे सारा जग ये उपजाए के नूर तो सब जग उपजा, क्या मंदिर क्या परे, वो सब इस तरह का जो एक श्रद्धा है वहाँ पे एक आती है। और इस तरह का एक इस तरह के स्थान जहाँ जहाँ जहाँ जहाँ भी है, तो वहाँ यही भाईचारे की और एक मानवता का संदेश मिलता है हमें।
0: सर आप
1: मानव एक है
0: जी, सर आप अपने कीमती समय निकाल कर हमारे श्रोताओं के साथ इस अहम दिन पर एक अपनी तरफ से संदेश देने के लिए आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी, आपका ढेरों ढेरों शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपका।
0: आपका
1: भी पूजा जी, और आपके जितने सारे श्रोता आपसे जुड़े हैं उनका भी मेरा नमस्कार,
0: जी
1: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का।
0: जी हमें भी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो लिसनर्स ने मैं दस दिया कि डॉक्टर रूप कृष्ण भट्ट जी दे नाल गल हो रही सी, जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड दिन विजेता ने, और इन्हों ने बहुत लंबा समा आप ये कह सकते कि कश्मीरी लिटरेचर ते कश्मीरी लैंग्वेज नू सर्व किया, और इसी वजह करके इन्हां दे नाल अज असी गल कीती माँ क्षीर भवानी जी दे पवित्र दिन ते, जो कि मेला चल रहा है अज कश्मीर दे दिन। सो कश्मीर दे इस मेले दे विच जिथे माँ दे श्रद्धालुआं नूं असी जाणिया कि उत्थे माहौल किदां दा है, उहदा इतिहास की है, इस तरीके दे नाल इह जो मेला है हर किसी नूं जोड़दा है, मानवता दा संदेश दिंदा है। ते हुन टाइम हो गया है प्रोग्राम दे विच अगले गीत नू एंजॉय करन दा। स्टे ट्यून्ड।

0: भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा चुनौतियों नाल निपटने लिए 2014 तो बाद उन्होंने सरकार ने वड्डे नीतिगत सुधार किए ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 नूं एक विश्वव्यापी उत्सव बनाने लिए दुनिया भर के लोगों का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया से एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह देख के खुशी होती है कि योग जीवन के सारे खेत्र के लोगों के वख-वख देशों को सेहतमंद जीवन और तंदुरुस्ती के सांझे यत्न में एकजुट कर रहा है। उन्होंने उम्मीद प्रगटाई कि यह दिन आने वाले समय में योग को अपने रोजाना जीवन का हिस्सा बनाने लिए होर लोगों को प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो नैशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख पहलकदमी चीता पुनर्वास प्रोजैक्ट की प्रगति का भी जायजा लिया। दौरे दौरान राष्ट्रपति ने पार्क के चीता प्रबंधन खेत्र का दौरा किया जिथे अधिकारियों ने उन्होंने प्रोजैक्ट की स्थिति बारे जानकारी दी। देश का पहला चीता पुनर्वास स्थान कुनो, इसके टुकमे निवास स्थान, भरपूर शिकार आधार ते मुकाबलतन घट मनुखी दखल अंदाजीकरण प्रोजैक्ट चीता तहत विकसित किया गया है। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति मुर्मू के अफ्रीकी देश बोत्सवाना के दौरे दौरान 8 चीतियां का प्रतीकात्मक तबादला किया गया सी। भारत अज तो नवी दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारां की दो रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल इस मीटिंग की प्रधानगी करेंगे। इस मीटिंग में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरियां, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वालों पैदा होने वाले जोखमों ते होर गैर रवायती सुरक्षा चुनौतियों ते चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधि दहशतगर्दी विरोधी सहयोग अते सूचना ते संचार तकनोलॉजियां दी सुरक्षित वरतों नाल संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा करनगे। इस मीटिंग में भारत, ब्राजील, चीन, रूस अते दक्षणी अफ्रीका समेत 11 ब्रिक्स मैंबर देशों के सुरक्षा मुखी शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। नैशनल टैसटिंग एजेंसी NTA अज तो UGC नैट जून 2026 की प्रीख्या शुरू करेगी। राष्ट्रीय पद्धर की यह योग्यता प्रीख्या इस महीने की 30 तरीक तक रोजाना 2 शिफ्टों में कंप्यूटर आधारित टैसट CBT मोड में कराई जाएगी। UGC नैट प्रीख्या जूनियर रिसर्च फैलोशिप, सहायक प्रोफेसर के अहदों और PhD प्रोग्रामों में दाखिले लिए कराई जाती है। NTA ने उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और प्रीख्या से संबंधित सारे वेरवे की ध्यान से पुष्टि करने की सलाह दी है। एजेंसी ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रीख्या के दिन तो पहले अपनी प्रीख्या की तरीक, शिफ्ट, समा और प्रीख्या केंद्रों की जांच कर लेनी चाहिए है। NTA ने नीट UG 2026 मुड़ प्रीख्या का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे रद्द किया है। सोशल मीडिया से घूम रही एक वीडियो में दावा किया गया कि प्रश्न पत्र टैलीग्राम से लीक होया सी। NTA ने कहा कि प्रीख्या सख्त सुरक्षा दरमियान सफलतापूर्वक कराई गई है। एजेंसी ने कहा कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और होर एजेंसियों के सहयोग नाल गुमराहकुन जानकारी फैलाने वाले विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। NTA ने विद्यार्थियों के मापियों नूं सिर्फ अधिकारित स्रोतों तो ही जानकारी हासिल करने की अपील की है। CBSE ने 12वीं जमात के अंकों की तस्दीक और पुनर्मुलांकन लिए नतीजे जारी करने शुरू कर दिए ने। बोर्ड अनुसार 87% तो वध अर्जियों के नतीजे ऐलान दिए गए हैं, जदों के बाकी के नतीजे जल्दी ही जारी किए जाएंगे। CBSE ने विद्यार्थियों को सिर्फ अधिकारित जानकारी पर भरोसा करन ते अफवाहों तो बचने की अपील की है। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा कि ईरान नाल गलबात प्रगति हो रही है। अमरीका ते ईरान के सीनियर डेलीगेट्स ईरान के परमाणु प्रोग्राम और खेतरी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने लिए स्विट्जरलैंड में गलबात कर रहे हैं। लेक ल्यूसन नेड़े बर्गेनस्टॉक रिसोर्ट विखे गलबात तो पहले JD वैंस ने कहा कि पहले ही उत्साहजनक नतीजे सामने आए हैं तो होर प्रगति की उम्मीद है। गलबात का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु प्रोग्राम है। इसराइल और लेबनान विचकार जंगबंदी बनाई रखने समेत खेतरी सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की जा रही है। पुरुष हाकी में भारत ने कल रोटरडम विखे FIH प्रो लीग के अपने अंतम मुकाबले में नीदरलैंड्स 3-2 हरा दिता है। भारत वालों जुगराज सिंह, अभिषेक ते रजिंदर सिंह ने गोल किए। भारतीय टीम के स्टैंड इन कप्तान हार्दिक सिंह प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हाकी टीम FIH महिला कप जितने वधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने

वेलकम बैक वंस अगेन और तुसी ट्यून कीता होया जी 102.7 103.6 ते न्यूज़ ऑन EIR ऐप ते FM रेनबो नू और फिलहाल टाइम हो गया है 8:40 और ये टाइम है जेड़ा ओ ए क्या रहा है कि टाइम है तुहाडे फेवरेट वाले सैगमेंट दा जिसदा तुहानू बेसब्री दे नाल रहिंदा है जी इंतजार के कदों साडा एक सैगमेंट आवे ते कदों तुसी मेरी इंटरप्शन तो बिना इंजॉय कर पाओ तुहाडा फेवरेट वाला सैगमेंट जिस दे विच असी तुहानू सुणाउंदे आ बैक टू बैक पंजाबी गाने जिस ते तुसी थिरकदे हो नचदे हो ते अपने दिन नू वधिया करन दे लई अपनी एनर्जी इकट्ठी करदे हो। सो आरजे पूजा तुहानी यानी कि मेरे नाल हुण मेरी इंटरप्शन तो बिना तुहाडे लई प्ले करन जा रही है साडे सैगमेंट अड्डी टप्पा दे विच नॉन स्टॉप बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग्स एंड हियर कम्स द फर्स्ट ट्रैक।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसीं सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: वेलकम बैक ट्यून की तरह जी तुसी FM Rainbow नू और प्रोग्राम चल रहा है RJ पूजा टोहानी यानी कि मेरे नाल दिलापना पंजाबी और जल्दी दे नाल सुन दिया प्रोग्राम दे विच पहला वॉइस मैसेज कित्थों आया है।
1: हेलो दोस्तों दिलापना पंजाबी मैडम जी थानू ते तुहाडी सारी टीम नू प्यार भरी सत श्री अकाल है जी।
0: जी जी नमस्कार जी वेरी गुड मॉर्निंग
1: वाले सारे लिसनरां नू भी प्यार भरी सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग जी।
0: जी
1: मैम दो कलेना एक गीत दे लेके आए जरा कबूल करना जी। सुख दे सब रिश्ते नाते मां दी कुख भी एक चाहत है जे साख संबंधी दुख विच बन जान ते सब दुखां तों फिर राहत है। माता पिता दा सत्कार जरूरी है परिवार च भैण भरावां दा प्यार जरूरी है जे दुख आया होए घबराना यारा सुख भी आएगा जो बीजा वो वढ़ना पैना नाल कुछ नहीं जाएगा भैन भरा ते माता पिता दी परिवार तो बिना जिंदगी अधूरी है। माता पिता दा प्यार जरूरी है सुख च दोस्त हुंदा बंदे दे नाल ओ दुख च हौसला दे के।

और बस उन कुछ ही कुछ दिन रह गए, कर लो एंजॉय, उसके बाद वापस वही रूटीन शुरू हो जानी है। सो किवें चल रही है जी तुहाडी छुट्टियां, वेकेशन, बाकी बहुत सारियां गल्लां बातां करांगे आपां। फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं जी, एंजॉय करना स्टार्ट करांगे प्रोग्राम गीत बहार शुरुआत कर रही हां, और इस गीत दे नाल फिलहाल जुड़े रहो मेरी यानी रिचा दे नाल 102.7 FM रेनबो ते दिल से दिल तक।

लाइफ दे विच आप अब यही लाइन कह रहे हैं ना कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, और जो फिर हो जाता है वो देखा नहीं जाता। इस करके अपने आप थोड़ा सा देखो, आप कुछ भी एफर्ट्स कर रहे हैं किसी भी चीज लिए है ना जी, सो बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी प्लानिंग करिए और सिर्फ ये ना सोचिए कि चलो जो भी कंडीशन आएगी प्लानिंग करांगे, मेहनत कर रहे हैं किसी भी चीज लिए, किसी सुपने लिए है ना, तो थोड़े बहुत एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं, टाइम टू टाइम करते रहिए। उस तो बाद फिर सानू पता है साडे दिल नूं कि हाँ जो भी चीज होगी इन फ्यूचर जिहदे लई आपां मेहनत कर रहे हैं और जो कुछ भी असीं मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं तां ओह वधिया ही होगी। फिलहाल वधिया हो रहा है जी इत्थे FM रेनबो ते, ट्यून इन किदा होया तुसीं 102.7 FM रेनबो ते, प्रोग्राम चल रहा है जी गीत बहार और अगला गीत स्टूडियो दे विच, चार तुहाडे रेडियो सेट ते बिल्कुल है तैयार स्टेडियम।

0: यूं करके। और देखो कदे कदे ना कुछ चीजा हटके कर लेनिया चाहीदियां ने, हो सकदा ना रिजल्ट भी जेड़ा ना बहुत हटके सानू मिले, क्योंकि डेली लाइफ दे विच ओही सेम काम जेकर असी करे जा रहे हां ते यूं करके, मेरा मतलब है जी कुछ नवा तरीका ट्राई कर लेना चाहीदा है। हुण देखो रोज 9 बजे उठदे हां या 8 बजे उठदे हां, तां एक दिन ट्राई करके देखिए, चलो 10-15 मिनट पहला उठिए, है ना, हो सकदा है कि साडी जेड़ी रूटीन है वो वधिया हो जाए और जल्दी आपां जागना शुरू कर देंगे तो फिर साडी मम्मी भी खुश हो जाएगी, हाय मेरा पुत कितना सोना जल्दी उठना उन्हें शुरू कर देता है ना। सो जो तो कुछ वधिया आपां करांगे या कुछ चेंज ल्यावांगे लाइफ दे विच, तां ही तां जो चेंज आपां चाह रहे हैं कि रिजल्ट सानू मिले वो उदों ही मिलना जदों आपां अपने वालों शुरुआत करांगे। फिलहाल शुरुआत तां हो चुकी है जी इस जर्नी दी, मेरे नाल इंजॉय कर रहे हो रिचा है अज साइड, लेकिन खत्म करांगी नूं 2 बजे। फिलहाल चल रहा है गीत बहार प्रोग्राम 10:48 दिल से दिल तक।
1: Oh bhai phu, fugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, fugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, fugadi phu, you like me and I like you too.

0: काय फुल जड़ी से तूने भरेले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Fugadi poo, you like me and I like you too. You like me and I like you.

म्यूजिकली आकाशवाणी एफएम रेनबो और 11:02:39 आवाज सुन के मैनू पता है बहुत सारे दोस्तों नु उस टाइम अंदाजा की हो गया, पता ही है कि 11 बजे तो लेके 12 बजे तक तुसी एंजॉय करोगे हुन प्रोग्राम पंजाबी तड़का। और तड़का देखो फरमाइशा तो लगना ही लगना, नाल ही नाल बहुत सारिया गल्लां बातें और एक खास चीज़ अज आप गलबात करांगे। वो चीज़ की उहदे लई थोड़ा जिहा सस्पेंस रखदे आ और 0181-23-4174 नंबर डायल करके तुसी इस प्रोग्राम च जिन्ने भी नवे नवे दोस्त ने उन्होंने ये नंबर से और जिन्ने पुराने दोस्त ने उन्होंने तो पता ही है कि किस प्रकार मतलब तुसी इस प्रोग्राम च जुड़ सकते हो जी मेरे नाल रिचा दे नाल। सो इंजॉय करते हैं जी पहला इस प्रोग्राम का गीत अमरिंदर गिल की आवाज़ के, उस तो बाद मिल रही हो तुम सिर्फ स्टे ट्यून्ड।

0: देखो मैं तो बैठी हुई हूँ और मेरे नाल नाल बहुत सारे दोस्त इस टाइम पर आके 11:25:35 हो चुके हैं, तो ये प्रोग्राम पंजाबी तड़का कर रहे हैं जी इंजॉय। और एक दोस्त जुड़े ने साडे नाल। हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल मैडम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: अर्जन सिंह, पिंड माले वाला, जिला फिरोजपुर
0: जी। अर्जन सिंह जी, हाल चाल वधिया?
1: हाँ जी, बहुत वधिया। कॉल अचानक लग गई ते शॉर्ट जा लग्या वे के सुपना ते नहीं देख रहा।
0: अचानक मतलब अचानक किवें लगदी है कॉल? अचानक मेरे लिए ठीक है, ठीक है अर्जन जी, चलो बहुत वधिया। सो अर्जन जी, तुहाडा भी कोई काश हैगा जिंदगी दे विच कि मैं ये चीज मतलब हो सकदा सी काश रिप्लेस करदा?
1: ए गिलवा शिकवा नहीं, जो है मालिक ने खुश होंदे जी रजा च।
0: गिलवा शिकवा नहीं है, कोई गिलवा शिकवा नहीं। अरे वाह, बहुत वधिया। चलो जो है ठीक है, खुश हो तुसी अपनी जिंदगी नाल।
1: जी जी बिल्कुल,
0: फिर हंस के दिखाओ। ठीक है, ठीक है, चलो। हुण मैनूं यकीन हो गया कि तुहानूं कोई गिलवा शिकवा नहीं है, खुश हो तुसी। चलो गीत कड़ा सुनना दस दो।
1: कुलविंदर बिल्ला दा ला दो अटीना सॉन्ग शायद होवे तो।
0: ठीक है, चलो जाओ तुसी उपर चढ़ जाओ, फिर लाओ जाके अंटीना, मैं गीत लगा रही हूँ।
1: ठीक है, मैं ऊपर चढ़ दूँ।
0: ठीक है जी, ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया। और इन्हों की आवाज़ जी है कुलविंदर बिल्ला की आवाज़ कह रही हूँ। अरे इंजॉय करो तुम हूँ रेडियो सरते, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है जी पंजाबी तड़का, और तड़का लग रहा है जो फरमाइशा के नाल नाल दोस्तों दिन गलों बातों का भी। स्टे ट्यून्ड, रिचा थोड़े नाल जुड़ी हुई है जी, दिल से दिल तक।

0: सो टाइम इज एग्जैक्ट 11:47 और 11:12 सेकंड भी नाल ही नाल ने और नाल ने जी साढ़े नाल लगे दोस्त। हेलो
1: हेलो बेटे नमस्कार जी, प्रवीण बोल रहा गोपाल नगर से।
0: प्रवीण जी आराम नाल मैं तो अजे पूछन वाली सी, तुसी पहले ही सारा कुछ दस दिता। प्रवीण जी बहुत बहुत स्वागत है। ख्वाहिशां
1: पूरियां होनियां ही नहीं। देखो जी जो भी हैगा किसे ने नहीं जाना, नाल इको ही जाना चाहिए। अहि अरदास करिए जिन्ना ही परमात्मा दा नाल लिए ओना ही घट आए, ओना ही नाल जाना साडे।
0: बिल्कुल ये तो तुसी ठीक क्या। चलो फिर आपा भी नाल चलदे आ हुन अगले गीत वल। केड़ा गीत सुनना तुसी?
1: ए एवें बंदा कहंदा मैं कीता ओ कीता, करना करोन वाला परमात्मा वा।
0: चलो जी ठीक है प्रवीण जी, तुहानू मैं गीत सुना रही हूँ मोहम्मद रफी की आवाज़ च। कॉल करने के लिए शुक्रिया। सो ये जिहड़ा गीत है वाकई बहुत वधिया गीत है, तो इसनू इंजॉय करदे हां। तो इस तों बाद कोशिश करांगे कि होर दोस्त नू प्रोग्राम च शामिल करदे हां। बहुत सारे दोस्त वेट कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

और मैं यहाँ जी 102.7 FM रेनबो से एंजॉय कर रही हूँ प्रोग्राम होम स्वीट होम और रिचा आज जुड़ी हुई है थोड़े नाल मेरे नाल कौन कौन है अपनी हाजिरी लगा रहे हैं अपने आप को काउंट कर लियो क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना स्टूडियो के बैठे बैठे लेकिन तुम अपने आप को जरूर काउंट कर सकते हो और काउंट तो वैसे आप मसाले कर रहे थे लाल मिर्च पाउडर जीरा हींग धनिया पाउडर हो गया नमक हो गया और हल्दी हो गई और होर की चाहिए जी तड़के लिए पता ही है तुम सारे चलो जिन्हें नहीं पता हूँ मैं दस रही हूँ सारा समान आप जिहड़ा चना दाल सब्जी अच्छ बना रहे हैं और नॉर्मली जिवें आप चने दाल नू

देखो सीटी दिलवानी है, दो सीटियां नू है ना जी बजवा देनी है, और 200 ग्राम जिहड़ी चना दाल आपां लेती है उहदे विच थोड़ा जिहा नमक स्टार्टिंग दे विच कई लोकी पा देंदे ने जदों आपां बॉयल कर रहे हां उस दाल नू, और नहीं बणा तुहाडी मर्जी है, आपां तड़के दे टाइम वी उह नमक जिहड़ा है उहदे विच पा सकते हां। हल्दी थोड़ी जी पा ली है और पानी पा के एटलीस्ट 350 मिलीलीटर जिहड़ा पानी है ना, या अपने अकॉर्डिंग जेकर असीं दाल देखो आदत हो जाती है जदों आपां दाल या चावल या रोटी जदों आपां बना रहे हुंदे आ, तो चना दाल किवें बनानी हुंदी सानूं पता ही है। सो 350 ml पानी जिहड़ा आपां पाया ना उह पा के, ज़्यादा नहीं 2 to 3 सीटी जदों आपां बजवा दित्ती है ना उस कुकर नूं, प्रैशर बन गया है, सो बस उह बंद कर देनी है। कि उस तो बाद करना की है, एक पेस्ट तैयार करना है। पेस्ट जो मैं समान देखो तुहानूं दस्सिया कि प्याज टमाटर अदरक लसन 2-3 मीडियम प्याज हो गए, और टमाटर जो आपां 2 to 3 छोटे टमाटर लेते हैं है ना जी, और 1 छोटा चमचा अदरक अपने अकॉर्डिंग, और लसन क्योंकि आपां पेस्ट बनाना इस चीज़ का, हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग जेकर बहुत तिक्खा खाना है तां वी, और बच्चे

वैसे होर कुछ इस टाइम लग्या कि नहीं लग्या, पर हाँ अज कल आपां एक चीज़ नूं देख रहे हैं और हाल ही दे विच एक मतलब कह लो कि आदेश भी जारी किया गया है। वैसे बहुत अवेयरनेस चाहिए इस चीज़ लई, है ना जी। और ये चीज़ की है, हुण मैं प्रोग्राम जो तुहाड़े नाल शेयर करांगी जी। होम स्वीट होम प्रोग्राम इंजॉय करियो मेरी यानी रिचा दे नाल 102.7 FM रेनबो ते। और देखो वेखण नूं की आ रहा है कि जिन्ने भी हुण अज कल ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, खासकर मैं फूड बिजनेस की गल कराँ, सो मिठाई का डब्बा हो या कोई पैकेट हो नमकीन का, कुछ भी है ना, कुछ भी आप ऑनलाइन जेकर मंगा रहे हैं तो कई बार की होंगे कि पैकेट नू क्लोज करन दे लई ना, जिन्हें भी बिजनेस जो भी उस बिजनेस ओनर की मैं गल कर रही हूँ, वो की करते हैं कि कई बार स्टैपलर के

0: और फिर देखो प्यार दी गल हो रही है हर एक गीत दे विच। प्यार तो वैसे दोस्तों भी है। इस टाइम 1:18:30 हो चुके हैं और प्रोग्राम मिडडे मेलोडीज कर रहे हो जी तुसी एंजॉय मेरी यानी रिचा दे नाल। और प्यार तो मेरे ख्याल अजकल जो मौसम हो रहा है ना जी इस दे नाल भी बहुत सारे दोस्तों प्यार है और प्यार FM रेनबो दे नाल भी है। ताही ना देखो ट्यून इन करके अपने फेवरेट वाले प्रोग्राम्स इस टाइम या फिर कोई भी टाइम हो तुसी ट्यून इन करके सुनते हो इंजॉय करते हो। और जिस टाइम मैसेजेस का टाइम भी नहीं होंगे ना उस टाइम भी दोस्त सानू मैसेज करते हैं उन्हों का प्यार ही है। सो बहुत वधिया लगता है प्यार देख के। और चलो फिर इसी प्यार दे नाल असी अगले गीत वल वध रहे हैं जी। मोहम्मद रफी की आवाज़ इसे नाल हर किसी नू प्यार है अज के टाइम च भी इस आवाज़ का जादू बरकरार है। तो इंजॉय करते हैं जी अगला गीत।
1: इतना

अरे राजा नू रानी मिलनी है ते रानी नू राजा मिलना है ताही ता कोई कहानी बननी है और उना कहानियां नू फिर मिलके ऐसे एंजॉय करना है जी है ना जी। और हो सकता तुसी भी कोई कहानी सुनी हो राजा रानी दी या फिर कोई भी कहानी जिदे नाल तुहानू भी बहुत ज़्यादा प्यार हो और इस कहानी नू सुन के तुहानू कहानी याद आ गई हो है ना। सो बहुत सारियां चीज़ां किसी ना किसी गीत नू सुन के सानू भी अक्सर याद आ जांदियां ने और फिर उहदे नाल ही कोई ना कोई कहानी जुड़ती चली जाती है। अगले गाने की कहानी की है तुसी देखो क्योंकि इहदे विच भी कुछ ना कुछ है जो राजा रानी कर रहे हैं। तो इंजॉय करते हैं जी प्रोग्राम का अगला गीत। स्टे ट्यून्ड।

म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी ते जलंधर ते दोस्तां दे नाल नाल एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी अमृतसर दे दोस्त वी इस टाइम साडे नाल जुड़े होए ने। 1:50 ते 33 सैकेंड हो चुके ने जी, ते जा रही है प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़। और अगला गीत लता ते मोहम्मद रफी जी दी आवाज़ च। स्टे ट्यून्ड।

जिसे जान चाहा और इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी ना करेंगे। ओह हो क्या बात है जी, जिसे जान चाहा और इज्जत दी उसे बदनाम थोड़ी करेंगे। वो चाहे किसी पर जान लुटाए उसके लिए अपने नुस्कान थोड़ी ना करेंगे। और वो गलत है तो हिसाब के लिए बैठा है ना ऊपर वाला मालिक, और वो गलत है तो हिसाब के लिए बैठा है ना ऊपर वाला मालिक। ये ऐसी है वो वैसी है बोलकर हम अपनी जुबान खराब थोड़ी ना करेंगे। क्या बात है जी, क्या बात है श्रोतेओ, क्या बात है। तो कमाल ही करती सर, कमाल ही करती। साडे सरोते सी जी वीपी कुलविंदर टेलर जी ने सानू भेजी सी, क्या बात है जी। उस तो बाद साडे वन एंड ओनली राम स्वरूप अरोड़ा चौंक चिल्लिया सुल्तानपुर लोधी तो इन्होंने मैसेज पाया मैंने एक की कह रहे ने, नमस्कार सर, टुडे हैव सीन योर फोटो ऑन सोशल मीडिया, लाजवाब पर्सनैलिटी, गॉड ब्लैस यू, स्पीक स्वीट बट नेम थोड़ा कौड़ा। अच्छा जी ये तो यार चलो ये तो कर लो मजा। अच्छा आई लाइक डिट वैसे अपना राम स्वरूप जी, थैंक यू सो मच। तुसी सानू इस करीब सानू जानिया सानू प्यार दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तुसी की भेजे असी भी देखिए फिर जरा। महफिले गुलजार जी दे शब्दा च लाइना है, लिख रहे ने कि क्या लाइन लिखी है लिखने वाले ने, क्या लिखा है हमें भी बताइए। जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है, सूख गए कुएं तुम्हारे, सूख गए कुएं तुम्हारे, इम्तिहान अभी बाकी है, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का मकान गिरवी है किसी का लगान बाकी है। क्या बात है सर, क्या बात है जी, क्या बात है। क्लैपिंग होगी क्लैपिंग, बहुत ही धन्यवाद थोड़ा सर। तुसी हर बार इन्ना कर दियो ते तुसी इस बार ना अज अपने हत्थी लिखी नहीं कुछ भेजिया, पर जो भी भेजा है भी बहुत सोहना सी दो सर। उस तो बाद साडे एक होर सरोते सत श्री अकाल दिल शायर विच रमनीश कौड़ा जी बलविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ तो लिख रहे ने कि तुम्हारे बाद किसी को दिल में बसाया नहीं हमने, तुम्हारे बाद किसी को दिल में बसाया नहीं हमने, तुम चले गए तो क्या हुआ, तुम चले गए तो क्या हुआ, यादों को कभी मिटाया नहीं हमने। क्या बात है सर, क्या बात है जी, क्या बात है। साडे नेक्स्ट सरोते गली अफीम वाली प्रेम मार्केट तो बठिंडे तो अमरजीत जस्सल चूची, चूची सामने ना सानू, सॉरी चूची तो इन्हें हो ना, अच्छा चूची उर्फ चूची होंगे ना अमरजीत जसल उर्फ चूची है, इन्होंने सानू एक फोटो भेजी है जो कि किसी राइटर की मैनशन नहीं है। दोस्तों सरोतियो रिक्वेस्ट, अगर तुम सानू बहुत प्यार करते हो ना राइटर जरूर मैनशन करया करो, तो अगर तुम खुद लिख रहे हो तो वैसे कोई गल ही नहीं होता, फिर कमाल ही है। लिख रहे भेजे इन्होंने कि लोग अपने लभण निकले ने, लोग अपने लभण निकले ने, लोग अपने लब्बन निकले ने अपने ही पिछे छड़ गए। ये तो है जी, ये तो है, पता नहीं आप कहें रब किड़िया रंगा च राजी, दुनिया किड़िया रंगा च राजी यार। दोस्तों सरोते हो है ना जी, एग्री या मी टू। वेल दोस्तों तुम सुन रहे हो प्रोग्राम दिल आज शायर है विद अपने दोस्त आर जे रमनीश दे नाल, ते कमाल ही कर रहे हो सरोतियों, ते बाकी सरोतियों की भी वेट आ मैनू कि वह सानू प्यार भरे मैसेजेस भेजन, आई मीन शायरियाँ भेजन, ते थोड़ा आर जे दोस्त रमनीश सुने गए इसनों। ते दोस्तों जरूरी अनाउंसमेंट है कि जेड़े ये प्रोग्राम सिर्फ 2:30 बजे तक चलेगा, उस तो बाद साढ़े दो प्रोग्राम आओगे जो कि एक 2:30 तो

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा।

जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी, ये दोनों वर्ज स्वर

तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे

0: रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था?
1: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
0: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
1: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
0: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
1: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
0: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का अंक फैटी लिवर पर आधारित है। आज हम जानेंगे फैटी लिवर को और साथ ही फूड सेफ्टी और फूड एडल्टरेशन पर भी बात होगी हमारे जो आज की रेडियो डॉक्टर है उनसे। हम खाने की मिलावट और खाने की मिलावट से होने वाले हमारे शरीर में नुकसान, साथ ही साथ फैटी लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी बातचीत करेंगे। हमारी रेडियो डॉक्टर हैं आज की डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर साहब आकाशवाणी के स्टूडियो में।
2: नमस्कार एंड धन्यवाद शालिनी जी। मुझे भी बड़ी खुशी होगी इस बारे में बात करके, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और खान पान तो हमारे देश की तहजीब है तो उससे रिलेटेड है।
1: बिल्कुल, और फैटी लिवर की जब हम बात करते हैं, लिवर एक ऐसा अंग है मैडम हमारे शरीर का जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आपने कहा खान पान एक तरह से धुरी है ये हमारे जीवन की और शरीर की भी। क्या हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, तो बहुत जरूरी होता है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें क्या खाना है ये सोचना, कितना खाना है, ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए जो आजकल

0: बिल्कुल नहीं सोचते
1: जी,
0: हैं,
1: जी.
0: तो इसकी अवेयरनेस की भी जरूरत है. हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, वो भी इस चीज को समझे. हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम उनको भी ये बात समझाएं कि किस तरह से हम अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं. लिवर क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो आप पूरी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं. और फैटी लिवर, जो पहले हम कभी कभार सुनते थे, फैटी लिवर जैसा शब्द, वो इतना कॉमन अब आजकल होने लगा है. तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि पहले तो ये कि फैटी लिवर होता क्या है और ये आजकल क्यों बढ़ रहा है.
1: देखिए, फैटी लिवर यानी हमारा यकृत, और फैट मतलब वसा. तो जब फैट जो होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा हम खाने लग जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे डायबिटीज़ और मोटापा साथ में होना, और हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होना. इन सब के साथ क्या होता है कि जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है, और जो फैट है वो हमारे लिवर पे जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है. उसे हम फैटी लिवर कहते हैं. और इसका जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है, ये काफ़ी बढ़ गया है आने हुए सालों में. और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी खान पान की शैली है, जो हमारी जीवन की शैली है, उसमें बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया है. तो उस कारण से फैटी लिवर जो है वो काफी
0: सुनने में
1: काफी सुनने में आ रहा है.
0: तो ये क्या बदलाव है और ये बदलाव हमारे लिए कितने हानिकारक हैं और अब हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे डिस्कशन हम आज करेंगे. तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं. रेडियो डॉक्टर को जारी रखेंगे हमारा जो आज का विषय है, फैटी लिवर पर.

0: दिल बहलता है आपके आ जाने से, और जब आप इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है आप हमें लिखकर बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। डॉक्टर साहब, आज जो हमारे श्रोता हैं बहुत सारे अभी तक सवाल अभी से ही भेज चुके हैं, कार्यक्रम अभी शुरू ही हुआ है, तो लगता है बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं फैटी लिवर से संबंधित। तो मैं शुरुआत यहीं से कर लेती हूं। हमें लिखा है अनमोल ने सरिता विहार से कि कैसे पता चलता है कि फैटी लिवर हो गया है, ये बताएं।
1: देखिए अनमोल जी और बाकी श्रोतागण भी, नॉर्मल जो हमारा लिवर होता है उसमें थोड़ा बहुत फैट तो एक्यूमुलेट होता है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन जब लिवर के वेट का 5-10% सिर्फ फैट हो जाता है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर एक डिसीज होती है, इसके कई स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इनिशियल जो होता है, जो सिंपल चीज होती है, जब सिंपल फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो वो होता है फैटी लिवर। उसके बाद जब फैट इतना ज्यादा हो जाता है कि जो लिवर के सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है तो स्टियोहेपेटाइटिस हो जाती है, उसे हम कहते हैं नैश या मैश। और आगे चल के जब ये इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर ही डैमेज हो जाता है तो वो होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो शुरुआत हमेशा फैटी लिवर से होती है।

0: है नॉर्मली हमें, या तो जब लिवर में फैट जमा हो जाता है तो उसका साइज बड़ा होने लग जाता है, और हमें जहाँ लिवर होता है राइट साइड में, वहां पर हमें खिंचाव या हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग जाता है. तो नॉर्मली फिर सब हम नॉर्मल होता है आजकल की अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें लिखा हुआ आता है फैटी लिवर. तो जरूरी नहीं है कि वो देख के हम डर जाएं. फैटी लिवर जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं काफी कॉमन है और प्रिवेंटेबल भी है एक बार अगर पता चल जाए तो. लेकिन जैसे ही अगर आपको पता चलता है फैटी लिवर है और उसके साथ फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट आते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि भाई फैटी लिवर है और अब आपको सावधानी रखने की जरूरत है. और अगर साथ में आपको मधुमेह है, शुगर की बीमारी है, आपको मोटापे से आप ग्रसित हैं, और बीपी की बीमारी है, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें कई बीमारियां साथ में आती हैं, और फिर फैटी लिवर आता है, तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, उस समय आपको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है.
1: जी, तो बहुत सारी बातें आपने, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने इसमें दिया, क्योंकि हमने अभी कॉज पे बात की थी पर आपने सिम्टम भी बताए.
0: जी जी
1: तो इसमें क्या दर्द भी होता है जैसे खिंचाव के साथ?
0: देखिए, जो हमारा लिवर होता है ना, वो एक कैप्सूल के अंदर रहता है, एक खोल होता है. भगवान ने आप एक प्रोटेक्टिव लेयर देके हम सबको भेजा है लिवर के आसपास. तो
1: जी,
0: जो वो जब नॉर्मल लिवर रहता है, फैट उसमें नॉर्मल मात्रा में रहता है, तो वो खिंचाव नहीं होता है. लेकिन जैसे जैसे फैटी लिवर बढ़ता जाता है, जैसे कि मैंने बताया 5 या 10% लिवर के वेट से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर लिवर का जो कैप्सूल है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और आपको दर्द या एक हल्की सी चुभन या ऐसा महसूस होता है जहां पर लिवर है राइट साइड में. आगे इसके लक्षण क्या होते हैं कि फिर जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं उसमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है. जो कोलेस्ट्रॉल वाले टेस्ट होते हैं उनमें एबनॉर्मैलिटी आनी शुरू हो जाती है. तो फिर ये एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज बनना शुरू हो जाता है. फिर हम देखते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है, कहीं आपको शुगर तो नहीं है, कहीं आपको बीपी की दवाई या दिल की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीजें फैटी लिवर के साथ होती है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है.
1: अच्छा
0: फिर हम
1: अच्छा
0: आपका वेट देखते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या आप ओबीस हैं या ऐसा है कि आपका शरीर मोटापे की तरफ बढ़ रहा है. तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं देखने के लिए कि अगर अकेला फैटी लिवर है या उसके साथ और भी जो लक्षण होते हैं वो है या नहीं है.
1: जी, तो अगर इस तरह का कुछ लगता है तो उन्हें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और जो जो टेस्ट डॉक्टर लिखे
0: जी
1: वो सब कराने बहुत
0: जी
1: आवश्यक
0: जी
1: है.
0: जी जो भी आपके निकटतम डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेंगे, आपको टेस्ट बताएंगे, और फिर उन सारी चीजों को, आपके जो लक्षण हो रहे हैं उनके साथ आपके टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सबको मिला के देख के फिर आपका डायग्नोसिस बनाएंगे कि आप किस बीमारी से पीड़ित हैं.
1: जी, तो डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि वेट भी इसमें
0: जी
1: काफी
0: जी
1: मैटर
0: जी
1: करता है, कि
0: जी
1: ओवरवेट तो नहीं है.
0: जी
1: तो ऐसा ही एक प्रश्न हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है. जतिन मल्होत्रा हैं और ये रहते हैं गीता कॉलोनी में, दिल्ली में. लिख रहे हैं कि मेरा फैट बहुत बढ़ गया है और मुझे भूख बहुत लगती है, तो बताएं नॉर्मल वेट होना कितना चाहिए?
0: देखिए, वो तो एज के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं कि भाई इस एज में पर्टिकुलर बीएमआई होता है हमारा, बेसल वो उसके हिसाब से होता है. तो ऐसे रेडियो पे तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती,
1: जी
0: लेकिन आपकी हाइट और आपके वेट और आपके एज के हिसाब से होता है. और अगर आपकी जो चर्बी है वो पेट पर है ज्यादा, जो एब्डोमिनल ओबिसिटी होती है वो रिस्क फैटी लिवर के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है.
1: अच्छा
0: एब्डोमिनल ओबिसिटी जो होती है, जो पेट पे जो खासकर मोटापा होता है, वो फैटी लिवर, शुगर और दिल की बीमारियों के साथ ज्यादा कोरिलेट होता है.
1: अच्छा इन्होंने
0: तो
1: एज लिखकर भेज दी है मैडम.
0: अच्छा,
1: अभी लिखा है कि मैं 27 ईयर्स का हूँ.
0: जी जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी तो
1: तो
0: 27 ईयर्स के हैं, और अगर 5 फुट, 5.5 या 6 फुट के कहीं बीच में है, तो इनका वजन कहीं 70 से 72 किलो के बीच में होना चाहिए, वो इनका नॉर्मल वेट है.
1: ठीक है
0: ऐसे रेडियो पे बताना बड़ा
1: जी,
0: मुश्किल
1: बिल्कुल आपने
0: है,
1: बताया,
0: ये
1: कई सारी चीजें
0: बहुत सारी
1: देखनी
0: चीजें
1: पड़ती हैं.
0: देखनी पड़ती हैं.
1: हाँ
0: पर अगर इन्हें लग रहा है कि मेरा फैट बढ़ गया
1: हाँ हाइट
0: है,
1: भी
0: हाँ,
1: देखना
0: हाइट भी देखनी पड़ेगी, सर्कमफ्रेंस देखना
1: पड़ेगा.
0: पड़ेगा,
1: जी
0: पेट नाप के ना जो मेजरमेंट्स हैं वो लेने पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मेरा फैट बढ़ता जा रहा है, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप उस पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि ये चीज बेस्ट चीज ये ऐसी है कि एक बार आप अगर ध्यान देना शुरू करेंगे तो ये रिवर्सिबल है शुरू में,
1: अच्छा
0: मतलब ये ठीक हो जा सकती है. ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपको फैटी लिवर हो गया तो वो नहीं ठीक होगा. इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं फैटी लिवर, स्टियोहेपेटाइटिस, दे आर रिवर्सिबल एंड दे कैन बी रिवर्टेड बैक. आप
1: अच्छा
0: नॉर्मल लिवर अपना दोबारा पा सकते हैं अगर
1: जी
0: आप सही समय पर लक्षण पहचान लें और ध्यान रखना शुरू कर दें
1: जी
0: तो.
1: तो ये भी हम जानेंगे आपसे कि कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है. हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर है, इनसे प्रश्न पूछ लेते हैं इनका. हेलो,
2: रिस्पेक्टेड शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार.
1: नमस्कार जी.
2: डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम.
0: नमस्कार जी, नमस्कार जी.
2: जो लोग ज्यादा नॉन वेज खाते हैं उनका लीवर जल्दी फैटी होता है. नंबर 2, जो हम सील्ड पैक्ड जिसको कहते हैं पैक्ड प्रोडक्ट लेते हैं।

0: प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड चड्डा जी, उसको हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड, जो हाईली प्रोसेस्ड होता है,
1: तो उसको उसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, एक साल से लेकर दो साल तक।
0: जी जी,
1: तो वो खाने से भी लीवर फैटी हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा।
0: देखिए चड्डा जी, देखिए कुछ भी चीज है ना, या हम अकेले नॉनवेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन शैली है, हर हर आदमी का एक अपना खान पान है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला खान पान गलत है और ये वाला सही है। कोई भी चीज जब भी हम एबनॉर्मल मात्रा में करेंगे तो वो हमें नुकसान देगी। उसमें ज्यादा घी तेल भी आ गए, उसमें ज्यादा मिठाइयां भी आ गई, उसमें ज्यादा तले हुए पदार्थ भी आ गए, उसमें ज्यादा नॉन वेजिटेरियन भी चीजें, मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही जो अनहेल्दी हैं, अगर वो हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैटी लिवर हो सकता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ये जो आजकल प्रोसेस फूड का चलन चल गया है, कि जो आप पैकेट खरीदें और वो एक डेढ़ साल तक ठीक रहेगा, और इंस्टेंट फूड जो है, ये जो फूड है ये बहुत प्रोसेस्ड होते हैं, इनसे फैटी लिवर होने का बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। फैटी लिवर ही नहीं, और भी जो बीमारियां हैं वो इनसे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इनका चलन आजकल ज्यादा ही चल गया है, और इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें केमिकल्स वगैरह डालने पड़ते हैं, जिससे कि जो इनकी नॉर्मल और अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो खराब हो जाती है।
2: एक तो प्रोसेस भी हो गया, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सब स्टैंडर्ड माल भी कई बार मिलता है, जिसको हम एडल्टरेटेड कहते हैं, तो उससे भी काफी समस्या,
0: क्योंकि खपत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है देश की, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए कई बार सब स्टैंडर्ड चीजें होती है, उनमें मिलावट हो जाती है, पता नहीं चलता। आए दिन हम रेडियो और टीवी पे सुनते रहते हैं कि भाई फलाना चीज में ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, तो वो भी चीजें, वो केमिकल्स होते हैं, वो मिलाए जाते हैं और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं, और हर जो चीज हम खाते हैं वो मेटाबोलाइज लिवर में ही होती है जाके, तो वो लिवर को नुकसान पहुंचाती है।
2: इसमें डॉक्टर साहब कई चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है
0: जी, मतलब इनका तो हम कुछ कर नहीं सकते,
2: जैसे पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है या स्प्रेज हो रहे हैं, वो किस तरह से, तो हम ये कर सकते हैं कि हम अच्छे से धो के खाएं, जो भी कच्चा खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं,
0: और कोशिश करें कि ताजी चीजें खाएं, पैकेट बंद चीजें अवॉइड करें खाना जितना हो सके। जैसे कि हमारे पूर्वज थे, वो साथ के साथ बनाते थे, साथ के साथ खाते थे, रखने का चलन कोई नहीं था कि एक समय का खाना दो तीन दिन तक चलता रहेगा। यहाँ तो हम प्रोसेस फूड की बात करें, जो पैकेट साल भर चलने की बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ताजा बनाएं, साथ के साथ खाएं, और प्रोसेस फूड अवॉइड करें।
2: जी जी, बिल्कुल सही बात। और हमारे ये एक श्रोता हैं तपोश प्रमाणिक, बोंगा वेस्ट बंगाल से हमें लिखकर भेज रहे हैं, आर चिल्ड्रन मोर एट रिस्क ऑफ फैटी लिवर, तो मुझे लगता है कहीं से ये जुड़ता है, क्योंकि बच्चे प्रोसेस फूड बहुत खा रहे हैं।
0: पोस्ट कोविड जो है चाइल्डहुड ओबेसिटी काफी बढ़ गई है, मतलब मैं पीडियाट्रिशियन नहीं हूं तो मैं एग्जैक्ट जो फिगर्स है वो नहीं बता सकती, लेकिन प्रोसेस फूड का चलन तो चल ही रहा है, और जो बच्चे होते हैं उन्हें ये घर की बनी हुई सब्जी और जो हेल्दी चीजें होती है वो नहीं पसंद आती, उन्हें पैकेट वाली चीजें, प्रोसेस फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें बहुत
2: कुछ प्रमोट भी होती हैं।
0: हमें एज अ पेरेंट तो मुझे लगता है, बट एज अ डॉक्टर तो मैं भी नहीं कह सकती कि कुछ है या नहीं है, बट हाँ हमारे बच्चे जो हैं वो भी, हमें भी लगता है कि हाँ इजी चीज है, एक पैकेट पकड़ा दो इंस्टेड ऑफ कि हम जाके ताजा बनाए, वो भी एक है, क्योंकि सब बिजी है, सबकी लाइफ स्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है और समय ही नहीं है किसी के पास, तो जो इजी ऑप्शन है वो पैकेट्स ही होते हैं। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, या तो मौसम खराब है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा सर्दी है, या फिर कभी बारिश आ रही है, तो जो पहले जैसे बच्चे पूरे दिन खेला करते थे, फिजिकल एक्टिविटी जो पहले ज्यादा होती थी वो अब बिल्कुल जीरो या निल रह गई है, और जो फूड है वो प्रोसेस्ड और रिच ज्यादा होता जा रहा है। तो हर चीज बराबर होती है ना, कि जितना हम खाएं उतना हम पचाने के लिए एक्सरसाइज तो करें, तो बैलेंस बना रहता है। जहां पे पाचन करने के लिए हम एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे और कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो वो फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है।
2: जी
0: ये है,
2: तो बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बात बताई है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती है, तो हम इन सारी बातों पर अभी इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद करेंगे बातें। आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास हैं, हम उनको भी लेंगे। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। मैं हूं शालिनी मित्तल और मेरे साथ आज की रेडियो डॉक्टर डॉक्टर वैशाली भारद्वाज, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही फूड सेफ्टी एंड एडल्टरेशन, खाने में होने वाली मिलावट और उसके नुकसान के बारे में भी डॉक्टर साहब बहुत कुछ बता रही हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो।
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून।
2: और डॉक्टर साहिबा को भी मेरा गुड आफ्टरनून।
3: जी गुड आफ्टरनून।
2: मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे महिलाएं घर के काम में ज्यादा लगी रहती हैं, तो मेरे जैसी जो 45 प्लस महिलाएं हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है और मैम उनको किन किन चीजों से दूरी बना लेनी चाहिए पर्टिकुलर इस एज में आने के बाद, ताकि हम इस समस्या से दूर रह सके।
3: जैसा कि आपने कहा कि घर का काम इम्पोर्टेंट है, तो जितनी इम्पोर्टेंस आप घर के काम को दे रहे हो ना कि भाई नाश्ता लंच डिनर बनाना है, उतनी इम्पोर्टेंस आपको एक्सरसाइज को देनी है कि एक्सरसाइज भी रोज करनी ही करनी है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपको ही नहीं, हर एज की फीमेल्स या मेल्स को बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमें अपना जो बॉडी वेट है वो आइडियल रखना है, यानी मेल्स में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 102 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए और फीमेल्स में 88 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका वेट सर्कमफेरेंस। अगर आपका वेट सर्कमफेरेंस इन नंबरों से ऊपर है मेल्स और फीमेल्स में, तो आप थोड़े हाई रिस्क की तरफ जा रहे हैं मोटापे के, और वो आपको लीड करेगा फैटी लिवर, डायबिटीज ऐसी बीमारियों की तरफ। फिर खान पान का बहुत ध्यान रखें, ताज़ा खाना बना के खाएं, अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्रोसेस फूड कम से कम रखें, ताज़ा खाना बनाएं, सब्जियां और फल ज़्यादा मात्रा में लें, एक्सरसाइज करें, खूब सारा पानी पिए और अपनी सेहत का ध्यान रखें। किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है, योगा हो गया, वॉकिंग हो गई या जिम अगर आप जाते हैं, तो वो उसको अपनी लाइफस्टाइल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लें जितना कि आपकी रोजमर्रा का जो घर का काम या ऑफिस का काम है वो रूटीन है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। उम्मीद है कि आपको सही और सटीक जवाब जो डॉक्टर साहब ने दिया और आप जैसे और बहुत सारे जो हमारे श्रोता है जो जिनका यह प्रश्न था उनको भी मिल गया। लेकिन हमारे एक श्रोता है डॉक्टर साहब मनोहर लाल गांधी चाणक्य चौक गाजियाबाद से, वो थोड़ा सा अलग व्यू रखते हैं
3: जी,
1: वो ये लिख रहे हैं कि फास्ट फूड और तरह तरह का नशा ये हमारे लिवर के लिए किस तरह से असर डालता है, ये तो एक क्वेश्चन है। पर इन्होंने लिखा है आगे कि आजकल घरों में महिला हो या पुरुष या बच्चे, कोई अपना काम करना नहीं चाहता, करता ही नहीं है, घर में नौकर लगा के रखा है, काम वाली लगी हुई है, खुद मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसका हमारे शरीर पे हमारे लिवर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है ये मैं जानना चाहता हूँ। और आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार।
3: नमस्कार जी। एक तो जो आपने बात कही नशे की, तो वो दो हम फैटी लिवर पे बात कर रहे हैं, ये जो है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इन पर्टिकुलर पे हम बातें कर रहे हैं।

0: लेकिन लिवर जो है वो अल्कोहल से भी खराब हो जाता है, और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इस आज के प्रोग्राम के उससे बाहर है, लेकिन हर तरह का नशा हमारे शरीर को नुकसान दे सकता है, ये हमें स्मोकिंग अल्कोहल ये तो सबको पता ही है। और जहाँ तक कि आपने बात की कि काम कम कर रहे हैं, देखिए आजकल जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा बदल गया है, फीमेल्स भी काम करने लगी हैं, मेल्स भी काम करने लगे हैं, और किसी ना किसी तरह हाउस हेल्प की जरूरत तो हमें पड़ती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारा काम हम उन पर ही छोड़ देते हैं, बहुत सारा काम हम खुद भी करते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल पर से अगर आप अपनी लाइफ में एक्टिविटी नहीं करते हैं वो एक रिस्क फैक्टर है, ना कि सिर्फ फैटी लिवर के लिए बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, जैसे शुगर, डायबिटीज हो गई, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई। तो फिजिकल एक्टिविटी तो हमें जितनी भी हो सके बचपन से ही बच्चों में भी आदत डालनी चाहिए, और जो भी घर के सदस्य हैं उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी वो अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाकर रखें। काम तो कोई भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी ही होगी।
1: हमारे साथ एक श्रोता फोन लाइन पर, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर, नमस्कार मैडम जी, सब निमित्त संजीव कुमार हूँ जी, मैं गाँव
1: जी। संजीव जी, अपना प्रश्न
2: जी। मैं प्रश्न ही है मैडम जी, अल्ट्रासाउंड में ना उसका कई साल पहले फैटी लीवर आया था जी, और उसकी वो यहाँ से करना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में दवाइयाँ भी लिखी, दवाई का नाम तो मेरा याद नहीं है, पर उससे कोई खास आराम नहीं है, देखने में कमजोर है और परफॉर्मेंस उसकी स्टडीज में बिल्कुल वीक है। पहले 6 साल मैंने बीएससी पास कर सके और अब भी, तो अब उसको क्या करना चाहिए मैडम? सर्दी में नाता नहीं है कहीं कहीं महीने, जैसे कि अक्टूबर में रुकेगा ना, फिर अप्रैल के बाद ही ना आएगा, और जी यानी वीक है बिल्कुल, कई बार अगर जाता है सिज़ोफ्रेनिया भी है उसको और एपिलेप्सी भी है जी।
0: हाँ देखिए, मैं भी यही कहने वाली थी कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी के लक्षण नहीं है, ये मानसिक बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, तो उन्हें जरूरत है कंप्लीट मानसिक इवैल्यूएशन की। जो भी आपके पास डॉक्टर हैं उनसे या किसी भी मनोचिकित्सक से आप उनको दिखाएं और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और फिर दोनों तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर चलेंगी। कई बार क्या होता है कि जो दवाइयां उनको अपनी मानसिक दवाइयों के कारण चल रही हैं उनसे भी फैटी लिवर हो जाता है, कुछ दवाइयों से होता है, तो आपको उनके बिहेवियरल थेरेपी और काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत लग रही है जैसा कि आप बता रहे हैं उनके कारण।
2: काउंसलिंग तो मैडम बहुत करते हैं जी, कल्पना चावला गवर्नमेंट जी जी जी काफी बार करते हैं काउंसलिंग
0: जी जी, वो आपको ना रेगुलर करवानी पड़ेगी ये, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, ये रोज रोज रोज रोज स्ट्रेस करना पड़ेगा आप लोगों को भी, और काउंसलिंग और दवाइयां जब दोनों तीनों चीजें इकट्ठे होंगी तो ही फर्क पड़ेगा।
1: धन्यवाद संजीव जी, और डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि उनको इवैल्यूएशन की जरूरत है, आप उसको फॉलो अप करें। और हमारे पास दिनेश शर्मा जी ने डॉक्टर साहब लिखकर भेजा है शिमला झुंझुनू राजस्थान से कि फैटी लिवर को पता करने के लिए कौन कौन सी जांचें की जाती हैं और इसका उपचार और बचाव वो सारी चीजें पूछी, तो हम बात तो कर ही रहे हैं, इसका कोई टेस्ट भी होता है जो अलग से?
0: शुरू में तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है एक, और अल्ट्रासाउंड के साथ कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट जिसे हम LFT कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स लेवल देखे जाते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल किया जाता है देखने के लिए कि आपको मधुमेह तो नहीं है, तो इनिशियली ये सब चीजें होती है। उसके बाद ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रोस्कैन नाम का एक टेस्ट होता है जो बड़े अस्पतालों में और बड़ी जगहों पर उपलब्ध होता है, वो टेस्ट कराना होता है देखने के लिए, उसमें एक पर्टिकुलर कट ऑफ वैल्यू होती है जो देखी जाती है, अगर आप उस वैल्यू के ऊपर आते हैं तो फिर रिस्क फैक्टर्स के हिसाब से असेस किया जाता है, और आपको जो भी प्रिवेंटिव चीजें हैं जो आपको उस समय से लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी बढ़ानी है, खाने में क्या खाना है, कितनी आपकी न्यूट्रिशनल कैलोरीज अलाउड है, वो सब आपको डिटेल फिर उसमें बताया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारी श्रोता है परिधि, दिल्ली में रहती हैं, लिख रही हैं, माय हस्बैंड हैज ग्रेड 2 फैटी लिवर एंड ही इज 30 इयर्स ओल्ड। तो ये कितना डेंजरस है बिकॉज ही इज सो यंग, और हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, कैन इट बी रिवर्स्ड बाय लूजिंग वेट और वी हैव टू टेक सम एडिशनल मेजर्स?
0: देखिये परिधि जी, इनिशियली तो वेट लॉस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो एक बहुत ब्रॉड टर्म होती है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें एक तो आता है कि आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज जो मैंने आपको, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूटेबल होता है वो आप शुरू करें। दूसरा होता है कि आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज, लाइफस्टाइल मतलब बदल रहे हैं हम, हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स, हम कितने बजे खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, क्यों कौन सा हम ऑयल यूज करते हैं, क्या हम प्रोसेस फूड खा रहे हैं, क्या हम नहीं खा रहे, कितनी देर हम बैठे रहते हैं पूरे दिन में, कि हम किस तरह का हमारा वर्क है, किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, तो वो सब हमें चेंज करना होता है। इनिशियल हमेशा लाइफस्टाइल चेंज

0: और मॉडिफिकेशन जो है दैट गोज लॉन्ग वे इन ट्रीटिंग यू. अगर उसके बाद नहीं आराम होता तो फिर बाकी चीजें दी जाती हैं कि दवाइयां हैं जो उपलब्ध हैं जो दी जाती हैं. और कंप्लीट असेसमेंट आपके हस्बैंड को जरूरत है. सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड में फैटी लिवर आने से अकेले से वी डोंट हैव टू पैनिक. जैसा कि मैंने अभी बताया था वेट सर्कमफेरेंस बीएमआई एलएफटी शुगर वो सारे एक बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो करने पड़ते हैं इवेलुएट करके उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि रिस्क कितना है. लेकिन अगर आ रहा है फैटी लिवर तो आई थिंक आप लोगों को एक्सरसाइज और डायट्री मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो अपने आप ही शुरू कर देनी चाहिए.
1: जी जी. अच्छा डॉक्टर साहब ये एक बात समझ में आई कि क्या ये अलग अलग ग्रेड का भी होता है जैसे इन्होंने ग्रेड टू लिखा है.
0: देखिए वो तो रेडियोलॉजिकल वो होते हैं उसमें ग्रेड दिया जाता है. अच्छा. जैसा कि मैंने बताया फाइब्रोस्कैन है उसमें भी हम असेस करते हैं ग्रेड उसमें भी ग्रेड होते हैं बट वो नॉर्मल आदमियों के लिए नहीं होते वो डॉक्टर्स के लिए होते हैं. डॉक्टर्स देखेंगे भाई कौन सा ग्रेड है उसमें रिस्क कितना होता है वो हम असेस करके फिर हम आपको बताते हैं कि भाई आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए.
1: जी संजय हमें लिखकर भेज रहे हैं बिहार से. इन्होंने लिखा है कि मेरे पेट में दर्द है एक साल से कभी ऊपर कभी नीचे रहता है तो क्या ये कहीं से फैटी लिवर का कोई सिम्टम माना जा सकता है.
0: देखिए नॉन स्पेसिफिक पेन कभी ऊपर कभी नीचे तो फैटी लिवर का सिम्टम नहीं होता. मतलब जैसा कि हम बता रहे हैं ठीक है अवेयरनेस है लेकिन इतना डर भी अपने मन में पैदा नहीं करना चाहिए कि भाई दर्द इधर उधर जो है वो कुड बी अ नॉन स्पेसिफिक एब्डोमिनल पेन नॉट नेसेसरी फैटी लिवर.
1: जी ओम प्रकाश जी हैं 83 इयर्स के हैं दिल्ली में रहते हैं. गॉल ब्लैडर की पथरी क्या फैटी लिवर के कारण हो सकती है और कितनी बड़ी पथरी के बाद ऑपरेशन कराना चाहिए ये इनके दो प्रश्न हैं. तो क्या फैटी लिवर पथरी
0: देखिए सर हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि पथरी को प्रमोट करने के बहुत सारे कारण होते हैं और फैटी लिवर उन कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ होता है. अब कितनी बड़ी पथरी होनी चाहिए ये तो इस प्रोग्राम के स्कोप से बाहर है तो वो मैं रेडियो पर नहीं बता सकती हूँ. आप किसी भी अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बात करें कि क्या करना है गॉल ब्लैडर की पथरी के लिए.
1: जी जी और भी बहुत सारे प्रश्न हैं व्हाट्सएप के माध्यम से लेकिन हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर. हेलो
2: हेलो
1: जी.
2: हाँ जी मैम नमस्कार.
1: नमस्कार.
2: हाँ जी मैम मेरठ से बोल रही हूँ मेरा नाम बबीता है.
1: जी बबीता जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में. प्रश्न कर लें डॉक्टर साहब से.
2: अगर फैटी लिवर हो गया है तो मैम कौन सी एक्सरसाइज करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं.
0: बबीता जी अगर आप प्रोग्राम शुरू से सुन रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन के एंड में बता रही हूँ कि ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है कि क्या खाएं ना क्या ना खाएं लेकिन मोटापे मतलब मोटे मोटे तौर पर ताज़ा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं और एक्सरसाइज जो आपको सूट करे जो आप कर सकें. अगर मान लो अब आप गाँव में रहती है मैं आपको कह दूँ आप जिम चले जाओ आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है और मैं आपको कहूँ नहीं आप दौड़ लगाओ जबकि आप दौड़ नहीं लगा सकते तो जो आपको शरीर अपने समय और अपने घर की जो नॉर्मल दिनचर्या है उसके हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप एक कोई एक एक्सरसाइज उठा लो और रोज उसको एक घंटे करो. ठीक है. हाँ ऐसे कोई स्पेसिफिक तो वो हर टेलर मेड होती है चीजें ना हर चीज एक आदमी के हिसाब से होती है वो आप देखेंगे कि आपको क्या कन्वीनियंट हो रहा है और आप किस चीज में कंफर्टेबल है. रही बात खान पान की तो तेल घी ये सारी चीजें तले हुए पदार्थ कम करें प्रोसेस फूड ना खाएं. कोशिश करें कि ताजा खाना बनाएं एक समय बनाएं उसी समय बनाकर यूज करें और अपने खाने में फल सब्जियां बीज ड्राई फ्रूट्स ये सारी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व करें और तली हुई चीजें और प्रोसेस फूड ना खाएं. ठीक है बबीता जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी. और इसी तरह से कुछ खाने पीने पे काफी मैसेजेस हमारे आए हैं और एक वेट पे काफी लोग बात कर रहे हैं. इन्होंने लिखकर भेजा है पीलीभीत से तिलक ने. मेरी दीदी की उम्र 47 इयर्स है उनका वेट 85 केजीज है और उनका पेट लगातार बढ़ता जा रहा है. मैं उन्हें रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं तो वो कहती है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है और एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूं. तो क्या एक्सरसाइज वो कर सकते हैं और उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी. ये
0: जी देखिए मैंने अभी दो गोल्डन नंबर आपको बताए थे 102 सेंटीमीटर आदमी जो मेल है उन्हें याद रखना चाहिए और 88 सेंटीमीटर है वो औरतों को याद रखना चाहिए. ये उनका वेस्ट सर्कमफेरेंस अगर इससे ज्यादा है तो आपके रिस्क जो है वो बढ़ रहे हैं. ये ओबिसिटी भी है और आपके फैटी लिवर डायबिटीज इन सब के रिस्क भी बढ़ जाते हैं. तो आपको उसी हिसाब से अपना वेस्ट मेजर कर लीजिए और अगर आपको ये इन नंबरों से ऊपर है तो फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए. हर तरह की एक्सरसाइज आप जैसा कि मैं बता रही हूँ बार बार कि हर आदमी के लिए एक कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं होती कि हम कहते हैं भाई आपको ये करना है तो करना है. आप अपने हिसाब से शुरू कीजिए धीरे धीरे घूमना शुरू कीजिए या जो भी आपकी बॉडी को कन्वीनियंट लगता है शुरुआत उससे कीजिए.
1: जैसे मुझे लग रहा है कि वो बहुत विग्रस एक्सरसाइज के लिए उनको फोर्स कर रहे
0: होंगे.
1: वो नहीं
0: भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि अचानक आपको आज कह दिया जाए जाइए 10 किलोमीटर दौड़ लगाकर आइए तो ऐसा नहीं होता. इट हैज टू बी ग्रेडेड. आज अगर आपने 15 मिनट किए तो अगले हफ्ते फिर आप 20 मिनट आइए फिर ऐसे 25 फिर बढ़ाइए.

0: बात करें।
1: धीरे धीरे शुरुआत, हर चीज नीचे से ऊपर ही जाती है ना, ऐसा नहीं होता कि अचानक एक दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। और वेट लॉस और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो इट गोज अ लॉन्ग वे। ये तो एक लाइफ, हम बात करें लाइफ स्टाइल, यानी जिंदगी भर आपको ये चेंजेस अपने में लाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने किया कि दवाई, भाई 15 दिन का कोर्स दिया, खत्म हो गया। ये हम कह रहे हैं बार बार लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, मतलब जो आपकी जीवन शैली है उसको आप बदलाव डालें। तो ये तो धीरे धीरे आएंगी, एक दिन में तो ये बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फर्क पड़ा है ये इतने सालों में पड़ा है ना। आप एक दिन में थोड़ा मोटे हो गए, एक दिन में थोड़ा फैटी लिवर आ जाता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो वैसे ही बदलाव में भी, नेचर में, खान पान में, वो लाइफ स्टाइल में धीरे धीरे बदलाव आएगा। एकदम तो कभी भी किसी में भी बदलाव लाना मुश्किल होता है।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। वी हैव टू मेक चेंजेस इन आर लाइफ स्टाइल, है ना। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और लौट के आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर के बारे में और साथ ही बात कर रहे हैं खाने में होने वाली मिलावट के बारे में। हमारे साथ हमारी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर वैशाली भारद्वाज। मैं हूं शालिनी मित्तल। सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और खाने में होने वाली मिलावट, इसके होने वाले नुकसान पर। और हमारे एक श्रोता हैं जो फोन लाइन पर इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो
1: जी नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: मेरा पेट काफी बढ़ रहा है दिन पे दिन, 2-3 महीने से तो काफी बढ़ गया। मैम उठने बैठने में तो काफी दिक्कत हो रही थी, तो कैसे समझा जा सकता है इसके बारे में जरूर बताए मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।
0: तो पेट बढ़ रहा है तो मैम बहुत देर से बोल रही हैं कि आपके खाने पीने का, आपकी लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजें आप गौर करें।
1: जी मैम
0: जी एक्सरसाइज करें, ये तो मैं ही बता दिया, मैंने ही बता दिया क्योंकि मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठी हुई हूँ तो इतना तो समझ में आ गया। आपने अभी ट्यून किया है क्या कार्यक्रम?
1: यस मैम।
0: जी जी जी जी तो आप ऐसा है, आप हमारे साथ रहें, हम कार्यक्रम के अंत में एक बार पुनः बात करेंगे मैडम से कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसमें मैम काफी सारी चीजें बताएंगी हमें कि किस तरह से हम फैटी लिवर को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यशपाल हमें लिख रहे हैं द्वारका दिल्ली से कि नमस्कार कर रहे हैं, साथ ही लिख रहे हैं माई क्वेश्चन इज कि आई हैव बॉर्डर लाइन हाई LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल एंड SGPTDO, आई नीड मेडिकेशन, तो क्या ये इससे कुछ जुड़ता है जो आप?
2: देखिए यशपाल जी, आपके आसपास या किसी ने आपको ये टेस्ट करवाने को बोला होगा ना, या तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं, तो जिन भी डॉक्टर ने आपको ये बोला है करवाने के लिए, एक बार आप उनसे जाएं और संपर्क करें, वो आपको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं फैटी लिवर के वो करवाएंगे इन ब्लड टेस्ट के साथ, और फिर देखेंगे कि कितना रिस्क है, उस हिसाब से वो आपको बता देंगे कि इनिशियल आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है या कोई दवाइयां लेने की जरूरत है।
0: जी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर से तरुण लिख रहे हैं, मेरी उम्र 43 इयर्स है और मेरा वजन 63 kg है, मुझे मोटे होने से डर लगता है इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं, पर लोग मुझे कहते हैं कि उम्र के हिसाब से मैं थोड़ा पतला हूं, तो क्या मेरा वजन उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है?
2: देखिए ये हमें अपनी बॉडी वेट से ना कभी हम खुश नहीं होते, जो मोटा होता है उसको लगता है कि हमें हम ज्यादा मोटे हैं, जो पतले होते हैं उन्हें लगता है वो हम पतले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप जो लाइफस्टाइल जीवन शैली जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको आप मेंटेन करके रखें, उससे आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात है हेल्दी होना, और आइडियल बॉडी वेट आप अपना हाइट और वेट के हिसाब से चेक कर लें कि क्या होता है। लोग अब लोगों के हिसाब से तो जीना बड़ा मुश्किल होता है ना। ये
0: अगर आपका वेट वो आप जैसा मैडम ने बताया है और सरकमफेरेंस
2: जी आपने जैसा कि वेट सरकमफेरेंस में कई बार बता चुकी, 102 आदमियों के लिए और 88 सेंटीमीटर औरतों के लिए, तो आप ध्यान रखें कि आप इन दोनों नंबरों से नीचे ही रहें तो वो बेहतर है आपके लिए।
0: जी संदीप कुमार लिख रहे हैं मुजफ्फरनगर बिहार से, मेरी उम्र 34 इयर्स है, मेरा पिछले कई वर्षों से फैटी लिवर ग्रेड 1 है, मैं नियमित एक्सरसाइज, रोज स्विमिंग करता हूं, खाने पीने में फल सब्जियां नियमित रूप से खाता हूं, प्रोसेस्ड फूड बहुत कम खाता हूं, क्या ये रिवर्सिबल है? इसे रिवर्स होने में कितना समय लगता है, मुझे और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: संदीप जी ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको जो जो चीजें हम बता रहे हैं इस प्रोग्राम में वो आप सब फॉलो कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल डेफिनेटली है, और आप लगे रहिए इन सब चीजों के साथ और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि भैया मैं 6 महीने करके फिर छोड़ दूंगा तो फिर वापस दिक्कत हो जाएगी, तो आपकी जो लाइफस्टाइल चल रही है उसको आप मेंटेन करें तो आपका जो लिवर है वो भी हेल्दी रहेगा।
0: जी और मोहम्मद इब्राहिम लिख रहे हैं श्रीनगर से कि माय रिक्वेस्ट इज रिगार्डिंग यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट्स, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कार्यक्रम में कि इस तरह से पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और उनको फ्रूट्स एंड देयर रीपिंग बिफोर देयर नॉर्मल टाइम, उनको पहले ही तोड़कर फिर उनको प्राकृतिक रूप से पकाया जाता है, जी कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, तो इनका प्रश्न इसी से संबंधित है कि क्या ये भी हार्मफुल हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए?
2: जी ये हार्मफुल है, इसलिए कहा जाए हमेशा कहा जाता है कि मौसमी फल और सब्जियां खाइए, कि जो जिस मौसम की फल और सब्जी अगर हम खाएंगे तो फिर किसान को भी इतनी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे ना चीजें पकाने के लिए, कि भाई जो गर्मी की चीजें हैं, जो सर्दी की चीजें हैं वो हम चाहते हैं हम गर्मी में खा लें, गलती तो हमारी ही है। हाँ हाँ, तो इसीलिए हमें जो सीजनल फ्रूट होता है वो उसी समय उन्हीं को खाना चाहिए, और डेफिनेटली पेस्टिसाइड्स और फूड एडल्ट

0: तो नुकसानदायक है ही है, तो उसका तो फिर अलग विषय में, इस पर तो अलग विषय में बात होनी
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: पर जी हाँ, इनके नुकसान है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो जिस मौसम का फल हो वो खाएं, क्योंकि वो उसी मौसम में प्राकृतिक रूप से ही बड़ा हुआ होगा और हमें नुकसान भी नहीं दिया होगा उसमें, और उसमें एडल्ट्रेशन की मात्रा कम से कम होगी।
1: जी, हमें ये प्रश्न किया है, लिखने वाले का नाम मुझे नहीं इधर मिल रहा है। इन्होंने लिखा है कि रात को खाना मैक्सिमम कितने बजे तक खा लेना चाहिए, खाने के तुरंत बाद सो जाना कितना सही है?
0: रात को खाना 7 से 7:30, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 से 7:30 के बीच में अपना रात का खाना खा लें, और उसके खाने के एकदम बाद बैठ के 2 घंटे टीवी ना देखें। कोशिश करें कि आप आधा पौना घंटा टहलें, उसके बाद किसी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम करें, और खाने के एकदम बाद सोना तो किसी भी मायने में हेल्दी नहीं होता
1: नहीं
0: है।
1: नहीं
0: एटलीस्ट खान जो लास्ट हमारा मील है वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया जो है वो हो जाए सोने से पहले पहले।
1: जी। और ये दूसरा प्रश्न है भेजने वाले।

0: इधर मिल रहा है, इन्होंने लिखा है कि रात को खाना मैक्सिमम कितने बजे तक खा लेना चाहिए, खाने के तुरंत बाद सो जाना कितना सही है।
1: रात को खाना 7 से 7:30, अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 7 से 7:30 के बीच में अपना रात का खाना खा लें, और उसके खाने के एकदम बाद बैठ के 2 घंटे टीवी ना देखें। कोशिश करें कि आप आधा पौना घंटा टहलें, उसके बाद किसी तरह का हल्का फुल्का व्यायाम करें, और खाने के एकदम बाद सोना तो किसी भी मायने में हेल्दी नहीं
0: नहीं
1: होता है।
0: नहीं
1: एटलीस्ट खान जो लास्ट हमारा मील है वो सोने से 2 से 3 घंटे पहले होना चाहिए, जिससे पाचन क्रिया जो है वो हो जाए सोने से पहले पहले।
0: जी। और ये दूसरा प्रश्न है भेजने वाले सुशील ठाकुर, ये लिख रहे हैं कितना खाना चाहिए रात में कितना
1: ये
0: खाना
1: तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना और क्या खाना चाहते हैं। वैसे
0: चाहिए
1: रात का खाना हल्का होना चाहिए, सबसे भारी नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: सुबह का नाश्ता सबसे हैवी मील होना चाहिए, फिर जो लंच है वो थोड़ा उससे हल्का, और रात का खाना सबसे हल्का
0: जी
1: जिससे वो
0: जी
1: जल्दी पच जाए।
0: अच्छा एक प्रश्न मेरा है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को पता लग भी जाता है, जैसा आप कह रही हैं कि फैटी लिवर बहुत कॉमन है, घबराने की जरूरत नहीं है कोई,
1: जी
0: पर कोई इतना रिलैक्स हो जाए कि वो फिर उसके आगे कुछ चेंजेस करे भी नहीं और उसको लगे कि कुछ ठीक है ये तो बहुत नॉर्मल है, तो क्या उसके आगे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो
1: जी
0: सकते हैं?
1: जैसे कि मैंने बताया, जो फैटी लिवर है वो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज है, जिसका जो सबसे नीचे वाली सीढ़ी है अगर हम बात करें तो वो है फैटी लिवर। उसके बाद जब इन्फ्लेमेशन, जब फैट जो है वो ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो स्टियो हेपेटाइटिस शुरू हो जाता है, यानी एक तरह की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है लिवर के सेल्स में, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस। और अगर इस समय भी हम ध्यान ना दें, लाइफस्टाइल ना मॉडिफाई करें, और साथ में हमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, डायबिटीज है, ऐसी बीमार मोटापा है, और हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आगे जाके चांसेस हैं कि हमें फैटी लिवर डिसीज हो सकती है आगे जाके, जिसमें हमें सीएलडी जो सिरोसिस ऑफ लिवर है वो हो सकता है, और सिरोसिस ऑफ लिवर के सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे पेट में पानी भरना, साइटिस होना, गफलत में आ जाना, हेपेटिक एनकेफलोपैथी होना, और आगे चल के लिवर का जो कैंसर है वो भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज पे, नॉन कम्युनिकेबल जो एक डिसीज होती है, इस पे प्रोग्राम शुरू किया है। अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि नीचे के लेवल से लेके और टर्शरी केयर हॉस्पिटल तक सब जो हेल्थ केयर वर्कर उस लेवल पे होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाए, उन्हें अवेयर किया जाए कि कैसे फैटी लिवर डायग्नोज करना है, कैसे हमें एक स्टेज को दूसरी स्टेज में जाने से रोकना है, और जब तक चीजें रिवर्सिबल हैं मतलब वापस नॉर्मल हो सकती हैं, सब लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, और ये जागरूकता फैलानी है कि भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए जिससे ये फर्क पड़े और रिवर्सिबल होकर आपका लिवर जो है वो नॉर्मल हो जाए।
0: जी और कोई भी बीमारी से बचना सबसे अच्छा होता है, या
1: प्रिवेंशन इज
0: प्रिवेंशन इज
1: ऑलवेज
0: ऑलवेज
1: बेटर
0: बेटर देन
1: देन
0: क्योर।
1: क्योर।
0: तो हम कार्यक्रम समाप्त करें, अभी समय है हमारे पास थोड़ा सा, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि अभी एक श्रोता हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े थे तो वो भी कह रहे थे, कुछ मैसेजेस भी आए थे, तो मैंने उनको यही कहा कि ये बात हम पुनः आखिर में करेंगे जिससे हमारे जो श्रोता बाद में भी जुड़े उन्हें भी लाभ मिल सके कि प्रिवेंशन क्या है इसका, और अगर प्रिवेंशन के लिए हम वर्क करना चाहें, चाहे जिसको नहीं हुआ है या जिसको ग्रेड 1 है या स्टार्टिंग है, ये सबके लिए बताएं कि एक जो टिप्स जो है आपकी तरफ से आज की।
1: देखिए, एक तो जनरल मेजर्स हैं जो सबको फॉलो करने चाहिए, कि हमें जनरल मेजर हैं जो आपको फैटी लिवर है, आपको नैश है, आपको नैफल्ड है, या आप जनरल हैं, मैं आप इसमें सब आ गए,
0: जी
1: ये कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। वो है कि हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए सबसे पहले, जैसे कि हमने बात की थी, नशे के ऊपर एक क्वेश्चन भी
0: हाँ
1: आया था,
0: जी।
1: हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, पीयर प्रेशर में आके सोशल, उसके लिए आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनकी वजह से अल्कोहल सभी पीते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हैवी अल्कोहल यूज़ है, एक तो आपका लिवर पहले से ही डैमेज है, साथ में अगर आप ऊपर से अल्कोहल और स्मोकिंग करोगे तो वो और डैमेज हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फिर बहुत सारे हेपेटाइटिस के वायरस हैं जो हमारे सोसाइटी में, हमारे यहाँ प्रचलन है, और कुछ लोगों, कुछ के तो प्रिवेंशन के लिए इम्यूनाइजेशन है, तो हमें सबको अपने आप को इम्यूनाइजेशन जो इंजेक्शन है वो लगवा लेने चाहिए, जिससे एटलीस्ट हमारे लिवर पे दूसरा जो अटैक है किसी और चीज का वो ना हो फैटी लिवर के
0: जी
1: साथ।
0: इंजेक्शन कौन से
1: हेपेटाइटिस
0: हैं?
1: बी के,
0: अच्छा
1: हेपेटाइटिस बी
0: हेपेटाइटिस
1: का
0: बी के,
1: वैक्सीन है जो
0: ओके हाँ
1: हेपेटाइटिस बी बड़ी प्रिवेंटेबल
0: जी
1: है, वो हमें करना चाहिए सब तरह के। और फिर आती है डाइट रिकमेंडेशन, डाइट, जैसा कि मैंने बताया है कि हमें एक बैलेंस डाइट खानी है, ये नहीं है कि सिर्फ हम कार्ब्स नहीं खा रहे हैं, हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं। जिम जो लोग जाते हैं वो बड़ा प्रचलन है कि बहुत सारे हमने ये सप्लीमेंट्स ले लिए, हमने हाई प्रोटीन, हम बस प्रोटीन ही प्रोटीन खा रहे हैं, बाकी चीज़ें हम नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है।

0: बैलेंस डाइट होनी चाहिए. कार्बोहाइड्रेट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, और गुड फैट्स जो है वो हमें खाने चाहिए. तो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, दालें जो होती हैं वो, और जो संतुलित भोजन जो होते हैं ना, एक थाली दिखाई जाती है हमेशा जिसमें सारी चीजें हैं,
1: कलर्स भी,
0: हाँ कलर्स पे, कलरफुल फ्रूट्स, हमें 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अपने खाने में इंक्लूड करनी चाहिए. हमेशा हेल्दी फैट्स खाने चाहिए, और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए. जो रेड मीट में होता है, जो फुल फैट जो डेयरी होती है ना वो उनमें होता है, और फ्राइड फूड्स जो होते हैं, प्रोसेस फूड होते हैं, वो हमें नहीं लेने चाहिए. फिर ट्रांस फैट जो होते हैं, जो हम प्रोसेस फूड की बार बार बातें कर रहे हैं, वो सब हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए. और पोर्शन कंट्रोल पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए.
1: अच्छा.
0: ये नहीं कि हम इतनी बड़ी थाली भर के बैठ जाएं, हमें अपने पोर्शन को धीरे धीरे कम करना चाहिए, और कैलोरी काउंट करके वो खानी चाहिए कि भाई इतनी कैलोरी हम खाएंगे, इतना कम पोर्शन, धीरे धीरे हमें पोर्शन कम कर देना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए. साथ में फाइबर जो है उस पर बहुत स्ट्रेस होता है, फाइबर इंटेक हमें बढ़ा देना चाहिए, और खूब पानी पीना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना है. फिर एक्सरसाइज पे हम बात कर ही चुके, जो भी आपको सूट करे अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो आपको एक्सरसाइज को भी अपनी लाइफस्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा बनाना ही बनाना है. क्योंकि जब वेट अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा जो फैटी लिवर है या नैश है या हम लिवर डिसीज तक पहुंचने वाले हैं वो सब कंट्रोल हो, और साथ में इनके एसोसिएटेड जो भी बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हाइपरटेंशन, वो भी कंट्रोल होंगी. एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो एक्सरसाइज से आपको फायदा होगा. और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, आपको रेगुलर, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये आपको रेगुलर अपनी जिंदगी का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है इनको रोज.
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज डॉक्टर साहब ने हमें बताई फैटी लिवर से संबंधित, कैसे इससे बचा जा सकता है, अगर हो जाता है तो भी आपने बताया इसको रिवर्स किया जा सकता है, और कैसे हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए.
0: एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज, विग्रस एक्टिविटी जिसे कहते हैं, वो होनी चाहिए. शुरुआत आप धीरे धीरे कीजिए, लेकिन आप 1 से 1.25 घंटे का एक्सरसाइज आप रोज रखिए, जिसमें आपका सांस फूले बात करते हुए ना.
1: अच्छा,
0: हाँ, वो टेस्ट होता है कि आप एक्सरसाइज करें तो आप किसी से बात ना कर पाए, आपको इतनी एक्टिविटी हो रही है. इस तरह की एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे चल रहे हैं और पसीना भी नहीं आ रहा और सांस भी नहीं चल रहे हैं,
1: मतलब
0: विग्रस एक्टिविटी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी.
1: तो हमारे आज बहुत सारे मैसेज आए हैं जो इस बात को ये दर्शा रहे हैं कि हमारे श्रोता काफी वेट कॉन्शियस हैं, बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं और कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं. तो हमें लगता है आज का जो ये कार्यक्रम है उसको सुनकर आपको काफी फायदा हुआ होगा, लाभ मिला होगा, और कुछ जो जिज्ञासाएं थी मन में, कुछ शंकाएं थी, कुछ समस्याएं जो आपकी,
0: एटलीस्ट अवेयरनेस है. लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटलीस्ट वो अवेयर है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है. ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि आपको पता है कि कहीं प्रॉब्लम है.
1: शुरुआत
0: तो वहीं से होती है कि यू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर.
1: बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, और इतनी सारी जो शंकाएं हमारे श्रोताओं के मन में थी उसको आज दूर करने में आपने मदद की है. तो हमारे साथ आज रेडियो डॉक्टर के रूप में डॉक्टर वैशाली भारद्वाज रही, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डॉक्टर RML हॉस्पिटल. हमारी आज बातचीत काफी गहन हुई और हमने काफी कुछ सीखा आपसे, पता चला हमें फैटी लिवर को हमने जाना, साथ ही साथ फूड सेफ्टी, फूड एडल्ट्रेशन के होने वाले नुकसान क्यों होता है और कैसे हमें अपने खाने में बदलाव करना चाहिए, इसके बारे में भी हमें काफी कुछ जानकारी मिली. तो आपको अगर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं. हमें मेल लिखिए healthairdelhi@gmail.com पर और बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा. आप रोज जुड़ते हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के साथ FM रेनबो 102.6 पर, और इस कार्यक्रम में आपको हम प्रतिदिन कोई ना कोई नई जानकारी देते हैं स्वास्थ्य से संबंधित. अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आगे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए. और अब स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर साहब.
0: थैंक यू.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन

0: हाँ जी दोस्तों, तुम सुन रहे हो प्रोग्राम हेलो जलंधर, मी एंड मी विद माय पापा। पापा थैंक यू बोले सारे नू।
1: कहता थैंक यू बोलना
0: है? मेरा मिलना मेनू बोलो थैंक यू, क्योंकि मैं तो मतलब स्वागत किया।
1: थैंक यू
0: रेंद पापा जी, ये तो चंगा था ना, तुसी अमी ओ खा लो गुड़ खा लो चाय, चुप चाप बैठे रहोगे, मिठा मिठा मुंह बोलूंगे ना तुसी। नवे शहरों से जुड़ चुके ने। हेलो
2: हेलो पापा जी, पहली पहने जी।
1: नमस्ते जी, अंदर है मुंडे है, की नाम तेरा?
2: सारे जी सनी भगत बोल रहे हैं, भारत कैंप जलंधर से।
1: सनी बहुत बहुत स्वागत है पुत्र तेरा।
2: भोले पाजी नमस्कार जी।
0: अंकल नमस्ते, तुसी पापा

हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, इस दे नाल ही हुन प्रोग्राम अपना कहने मतलब एक तुसी एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज सुन रहे हो ते आकाशवाणी जलंधर दा यह रेनबो चैनल है ते हुन तुसी युवा साथी अपना प्रोग्राम सुनोगे युवाणी।

0: है ना, मैनूं डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है।
1: जी
0: अपना टाइम स्पेंड, अपने पूरे दिन दे विच कुछ घंटे तुसी फोन तो दूर रखो और लाइक गार्डनिंग कर सकते हो तुहानू, है ना। पेड़ पौधे जे मैनूं लगता कि अपने गार्डन बनाना चाहते हो तुसी बना
1: बिल्कुल,
0: सकते हो, तुसी उन्हां नाल
1: हैंडमेड चीज़ां भी असीं बना
0: हैंडमेड चीज़ां
1: सकते हैं।
0: क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल। और तुसी डांस वगैरह कर सकते हो, अगर तुसी सिंगिंग तुहानू इंट्रस्ट है
1: जी
0: तुसी उहदा वी रियाज कर सकते हो, क्लासेस वगैरह लै सकते हो। यह सारिया चीज़ां मैनूं लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स कर सकती हैं फिर।
1: बिल्कुल। इस तो अलावा दोस्तों तुसीं कई तरह दे, जिवें कि आपां पहलां गेम्स खेडिया करदे सीगे, जिवें कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गई, इहो जिहे चीज़ां नूं खेड के तुसीं अपना जिहड़ा टाइम है उसनूं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके दे नाल स्पेंड कर सकदे हो। इसलिए स्क्रीन टाइम नूं कर दो बाय बाय, ते नवीं जिहड़ियां पुरानियां गेमां है उहनां नूं मुड़ वापस लिया के उहनां नूं करो दोबारा तो
0: हाय
1: हाय।
0: हाय सही गल है।
1: हाँ
0: हाँ, तो मैनूं लगता असीं बढ़िया सारिया गल्लां कर लईआं है, तो तुसीं मैनूं लगता मोटिवेट भी जरूर होवोगे, तो थोड़ा जिहा स्क्रीन टाइम घट करो। असीं तो जरूर प्रोमिस करते हैं कि असीं भी करांगे, यह नहीं है मैनूं लगता कि असीं कहांगे तो फिर सानूं दिख दे कि कोई सीखूगा,
1: बिल्कुल, शुरुआत तो अपने तो ही करनी
0: अपने तो करनी
1: पड़ेगी।
0: चाहिए। और इदा ही तुसीं भी अपने तो शुरुआत करो, अपने दोस्तों नाल शेयर करो, और असीं भी तुहाडे नाल शेयर करन लगे हाँ कि असीं तुहानूं एक गीत सुनाने लगे हाँ, तुसीं यह गीत इंजॉय करो। इस गीत तो पार असीं मिलते हैं फिर प्रोग्राम युवाणी दे विच।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: दोस्तों तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम लव यू जिंदगी विद आरजे रमनीश। दोस्तों असी गल कीती सी ना कि लिविंग फॉरवर्ड दी आपां गल कीती सी कि तुसी जीवन च ना की हासिल करना चाहुंदे हो। मैं दोबारा दस्सां दोस्तों, बहुत लोग ना जीवन नूं बिना किसी स्पष्ट दिशा दे जिउंदे हन अते बाद च सोचदे हन कि उह असल च की हासिल करना चाहुंदे सन। इसलिए समय समय ते रुक के ना यह सोचना जरूरी है कि असी किस तरह का जीवन जिउणा चाहुंदे हां अते साडे लई सब तो महत्वपूर्ण की है। जीवन व्यस्त रहन दा नाम है दोस्तों, जीवन व्यस्त रहन दा नाम है। उस तो पहला असी गल कीती सी कि तनाव नूं डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखो। तनाव नूं असी अपना दुश्मन मानते हाँ, लेकिन कई बार ना तनाव इस गल दा संकेत हुंदा है कि कोई चीज जिहड़ा साडे नाल महत्वपूर्ण है, जेकर प्रीख्या काम जां किसी जिम्मेदारी नूं लैके चिंता हुंदी है ना, तां इस दा मतलब है कि असी उसकी परवाह करते हाँ। तनाव नूं डर वांग नहीं ऊर्जा वांग देखना सीखो दोस्तों। इस तों बाद मैं गल करदा, लगातार अभ्यास करोगे तां दूजिआं तों अलग दिखोगे दोस्तों। एक गल तुहानूं मननी पवेगी कि किसी भी खेतर च ना महारत जिहड़ी अचानक नहीं मिलती। इस नाल जिहड़े कई सालां दा अभ्यास, धीरज अते सिखण दी इच्छा चाहीदी है। शुरुआत च ना गलतियां होना सुभाविक है। असी ना एक गलती नूं मन्नण लग जांदे कि यार असी गलती करती आ, असी उह करता। असी इस तरीके नाल दुनिया नूं समझ लैंदे हां कि गलती कीती तां समझ लो गलत हो गया ते असी गलत आ। असी मतलब एज ए लूजर हाँ, असी कुछ होर भी सोच लेंगे, कितना कुछ सोचते होंगे दोस्तों, अलग अलग सोचते होंगे। पर जो तुसी जिंदगी जिउणी सीख लेंगे ना तो पता लग जाता है, तो की होंगे थानू भी पता है दोस्तों। जो लोग ना लगातार अभ्यास करते हैं ना, हौली हौली ना

हाँ जी हाँ जी हाँ जी दोस्तों, आखिर से ही कहूंगा कि जिंदगी रुसे ना हंसे, तू बस प्यार करी जा, हर सां हर पल नु शुक्रिया कही जा, क्योंकि जेड़ा लव यू जिंदगी कहता है ना, रब ओदे हंजू भी मोती बना देता है। रब रखा दोस्तों, जल्द ही मिलांगे नवी उम्मीद नाल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: हाथ से
1: गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
0: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
1: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
0: होता है तो होने दो।

0: मैं मर जावा, मैं मर जावा।
1: नहीं नहीं नहीं इदा काम नहीं करना। क्यों यार ना मिले तो मर जावा, क्यों मरना, जिंदगी बड़ी कीमती होंगी है ना। तो इदा का काम बिल्कुल नहीं करना जी, बस गाने तक ही रहो। जे असल च कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ा खम है जो भुगतना पै सकता है। मतलब कुल मिला के गल यह है कि जिंदे रहो, आबाद रहो। तो कई लोग कहते हैं जिंदे रहो परा रहो, की कहते हैं जिंदे रहो परा रहो। मतलब उन्होंने लोगों की भी कहावत बनी है जिहड़े तंग करते हैं। कहते हैं किसी ने पैरी हथ लाया एक बंदे नूं, ते बड़ा तंग सी उहदे कोलों, कहता भरा तू जीउंदा रह पर परा रह। सुन अगली खबर, जानकारी जिहड़ी तुहाडे नाल मैं सांझी करांगा। कहते हैं कि जलेबी दा जलेबी किवें पै गया। हुण बंदा जलेबी नूं जलेबी ना कहे ते की लड्डू कहे। चलो कलाकंद भी कह लो जे तुहाडा दिल करदा। मतलब की कलाकंद ना कहिए, हदवाणा कह दिए, खरबूजा कह लिए, खरबूजा ठीक रहूगा। सो मतलब ठीक है, हासा मजाक अपनी जगह। हुण आओ जो इनफॉर्मेशन दे उत्ते। इनफॉर्मेशन दे विच की है जी, कहिंदे ने कि इनफॉर्मेशन दे विच कि जिहड़ी जलेबी है उसदा नाम जलेबी किवें पै गया। छोटी जी इनफॉर्मेशन है, कहिंदे ने कि जलेबी का नाम जलेबी इस करके पै गया। इतिहास कहिंदे ने बहुत पुराना है, फारसी शब्द है जलेबिया, परशियन शब्द। इस अरबी शब्द अते अरबी शब्द जलाबिया तो जुड़ के बनया जलेबी। यह मिठाई मूल रूप तो पछमी एशिया तो ईरान तो आई सी। इस दे विच रमज़ान दे विच बनाई जाती सी। मध्यकाल विच तुर्की अते फारसी व्यापारियों के वलों इसनों भारत लियांदा गया। भारतीय लोगों ने इसकी मिठास अते चाशनी दे अनुपात नूं देखदे हुए स्वाद अनुसार इसनों ढाल लिया। हौली हौली जलेबियां तो यह लोकप्रिय नाम जलेबी बन गया। जलेबी दिलचस्प इतिहास, अपने मध्य पूर्व की जेकर गल की जाए तो भारत के रूप में सफ़र को जानने के लिए थानू बहुत सारिया कहानियां मिल सकदियां ने। जलेबी एक घुमावदार है डिश है जो कि कुछ भारतीय

रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त आज पहले कार्यक्रम का आगाज हो चुका है शाम में। कहते हैं कि एक लम्हे में बिखर जाए।

कहते हैं कि दर्द ऐसा है कि जी चाहे है जिंदा रहिए, जिंदगी ऐसी कि मर जाने की जी चाहे है। 102.7 FM रेनबो, शाम गजल।

कहते हैं कि किससे जाकर मांगिए दर्द मोहब्बत की दवा, किससे जाकर मांगिए दर्द मोहब्बत की दवा, चारा गर अब खुद ही बेचारे नजर आने लगे। 102.7 FM रेनबो, शामी गजल।

कहते हैं कि मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा घर ये तेरी। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारा घर ये तेरी। नवाजिश ये मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा ना दे। 102.7 FM रेनबो।

कहते हैं कि बेनाम साये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। 102.7 FM रेनबो, शाम गजल।

नमस्कार दोस्तों, रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं हूं आपका दोस्त आरजे परविंदर। कहते हैं कि इस समय कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, एक प्यार का नगमा है। कहते हैं कि शहर की रात और मैं ना शाद और न कारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे अवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, गम में दिल क्या करूं, वहशत दिल क्या करूं। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि अजीज इतना ही रखो कि संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि सुना है रात उसे चांद तकता रहा, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। 102.7 FM।

कहते हैं कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो, जाने किस किस से। इलाज अपना करवाते फिर रहे हो, जाने किस किस से। मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत क्यों नहीं करते। 102.7 FM रेनबो, एक प्यार का नगमा है।

कहते हैं कि इन अंधेरों से सूरज कभी निकलेगा नजीर, इन अंधेरों से ही सूरज कभी निकलेगा नजीर, रात के साए जरा और निखर जाने दे। 102.7 FM।

कहते हैं कि जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। 102.7 FM रेनबो।